श्रोताओं, अभी आप संवेद स्वरों में मातृवंदना सुन रहे थे। कार्यक्रम में प्रस्तुत है अजीत कड़कड़े के स्वर में ये पारंपरिक रचना।

0: श्रोताओं, अभी आप नुसरत वसीम की आवाज़ में ये नात सुन रहे थे। नुसरत वसीम के गाए इस नात के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 5:55 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आज की हमारी चर्चा का विषय है बछड़े का पालन पोषण। किसी बछड़े का भविष्य उसके बचपन की देखरेख पर निर्भर करता है। बछड़े पालने की दो विधियां होती हैं। पहली विधि में बछड़े को गाय के साथ रखा जाता है और गाय से दूध निकालने से पहले एवं बाद में अल्प मात्रा में उसे दूध पिलाया जाता है। दूसरी विधि के अनुसार बछड़े के पैदा होने के 2 या 3 दिनों बाद ही या फिर खीस की अवधि तक बछड़े को दूध पिलाकर बाद में उसे गाय से अलग कर लिया जाता है। इसके बाद पशुपालक के हाथों में ही बछड़े को चारे एवं प्रबंध हेतु सौंप दिया जाता है। इसे वीनिंग पद्धति कहते हैं। वीनिंग पद्धति के बहुत से लाभ हैं। यदि किसी दुर्घटना से बछड़े की मृत्यु हो जाती है तो गाय से रोजाना दूध निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि वीनिंग पद्धति अपनाते हैं तो बछड़े को सही मात्रा में दूध दिया जा सकता है। गाय के दूध देने की सही क्षमता को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और बछड़े को शिशु आयु में ही अलग किया जा सकता है। बछड़े द्वारा दूध निकालने में सहायता ना करने से स्वच्छता भी बनी रहती है। वीनिंग पद्धति वैज्ञानिक विधि है, अतः इसे अपनाकर आप ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। साथियों, बछड़े के जन्म के तुरंत बाद कुछ एक बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। गाय के ब्याने के तुरंत बाद उसे बछड़े को चाटने देना चाहिए, जिससे कि उसका शरीर सूख जाए एवं बछड़ा आसानी से सांस ले सके। बछड़े के नाभि को उसके शरीर से 1/2 इंच रखकर कैंची से काट लेना चाहिए। नाभि के कटे भागों में टिंचर आयोडीन का 30% लेप लगा दें, जिससे कि कोई संक्रमण ना हो। पहले 3 दिनों तक बछड़े को दूध या खीस पिलाते रहना चाहिए। 3 दिनों तक बछड़े को 2 से 2.5 लीटर तक खीस पिलाया जा सकता है। अधिक खीस पीने से जानवर कई बीमारियों से बच जाते हैं। खीस में प्रोटीन की मात्रा लगभग 12 से 17% होती है, जो कि सामान्य दूध से 3 से 5 गुना ज्यादा होता है। इसमें कॉपर, लोहा, मैग्नीशियम व मैग्नीज आदि तत्व भी पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए तथा अन्य विटामिनों की भी प्रचुर मात्रा होती है। किसान भाइयों, बछड़ा जन्म से 1/2 घंटे से लेकर 1 घंटे के अंदर स्वयं अपनी माँ के स्तन के पास खड़ा हो जाता है। कमजोर बछड़े को मदद करने की जरूरत पड़ सकती है। इसी प्रकार वीनिंग पद्धति के मामले में बछड़े को दूध पीने के लिए सिखाने की आवश्यकता पड़ती है। बछड़े को मनुष्य के बच्चे की भांति बोतल में दूध डालकर पिलाया जाता है या फिर किसी साफ बाल्टी में सही मात्रा में दूध डालकर उसके मुंह में डाला जाता है। बछड़े के नाक को दूध के समीप रखना चाहिए तथा दूध पिलाने में सहायता करने वाले मनुष्य को उसे अपनी उंगली को चूसने देना चाहिए, जिससे कि बछड़े का सिर आसानी से बाल्टी में आ जाए तथा वो बाल्टी में मौजूद दूध को धीरे धीरे पी सके। इस तरह लगातार दूध पिलाने से बछड़ा दूध पीना सीख

0: जाता है। बछड़े की अच्छी बढ़ोतरी एवं स्वास्थ्य के लिए उसे दूध के साथ साथ अनाज का मिश्रण भी दिया जाना चाहिए। 15 दिन की आयु से ही बछड़े को अनाज मिश्रण देना प्रारंभ कर देना चाहिए। जैसे ही बछड़ा दूध पीकर छोड़ता है, उसे एक मुट्ठी से अनाज का मिश्रण देना चाहिए। ऐसा करने पर वो स्वयं खाना प्रारंभ कर देगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा 4-5 दिनों तक ऐसा अभ्यास कराया जाता है, तो रोजाना दूध के अतिरिक्त 500 ग्राम अनाज मिश्रण दिया जा सकता है। बाद में दूध की मात्रा को धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। किसान भाइयों, शुरू शुरू में जो बछड़े होते हैं, वो कई प्रकार के रोगों के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। अतः उनकी स्वास्थ्य की देखभाल भी निरंतर हमें करती रहनी चाहिए और समय समय पर पशु चिकित्सा विशेषज्ञों से भी सलाह करनी चाहिए।
1: अभी आप एग्री टिप्स सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।

देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है।

0: के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी The news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. External Affairs Ministry said that the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. Our correspondent reports that economic security has emerged as a key pillar of the relationship.
2: During the first economic security dialogue held in Tokyo in November 2024, the two sides identified 5 sectors as priority sectors for strategic collaboration. These are semiconductors, critical minerals, pharmaceuticals, clean energy and information, and communication technology. The India-Japan relationship is marked by frequent high-level political engagement. Most recently, Prime Minister Narendra Modi interacted with the Japanese Prime Minister during the G7 summit in France. The two leaders had earlier met on the sidelines of the G20 summit in Johannesburg in November last year. The annual summit remains the flagship platform driving the strategic agenda of the partnership. An action plan for Japan-India human resource exchange and cooperation was launched during the annual summit in 2025, which envisages two-way exchange of 5 lakh personnel in 5 years, including 50,000 skilled and semi-skilled personnel from India to Japan. Apart from annual summits, high-level exchanges and meetings regularly take place at foreign Minister, Defense Minister, NSA, Foreign Secretary, and other levels. Suparna Sekya, Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi has said he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi today, and that will deepen. That will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said he is delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Employees Provident Fund Organization, EPFO, has officially notified an 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. The ratings have been declared following approval of the Ministry of Labour and Employment as per the EPF scheme 1952. It has directed regional and zonal offices to credit the approved interest to members' EPF accounts.

0: The Delhi government has notified a permanent winter pollution master plan that will remain in force every year from 1st of November to 28 February to curb seasonal air pollution in the national capital. Chief Minister Rekha Gupta said the new framework consolidates existing pollution control measures into a single set of rules, ensuring timely implementation without issuing separate orders every winter. The notification incorporates the revised GRAP guidelines of the Commission for Air Quality Management and directions of the Supreme Court. Under the new rules, vehicles without a valid pollution under control certificate will not be supplied fuel at petrol pumps, CNG and LPG stations across Delhi throughout the year. In the FIFA World Cup, Belgium staged a stunning comeback to beat Senegal 3-2 after extra time round of 32 and qualify for the round of 16. Youri Tielemans scored a 125th minute penalty to seal a dramatic 3-2 victory and extend Belgium's unbeaten run to 17 matches. Belgium will now face the winners of the United States versus Bosnia and Herzegovina match in the round of 16. In men's cricket, the first T20 international between India and England was abandoned due to rain in Chester Lee Street last night. The five-match series now stands level at nil-nil. Opting to bat first, India scored 189 for 7 in stipulated 20 overs, with skipper Shreyas Iyer scoring higher 68 runs off 47 balls. And that's the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आइए अब सुनते हैं जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार एमवी कैंबल बे वाइजाक की यात्रा पर कल 3 जुलाई को शाम 4 बजे हेडो जेटी से छूटेगा। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान के लिए कल शुक्रवार 3 जुलाई को रात्रि 8 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जलयान की वापसी 4 जुलाई को सवेरे 8 बजे लिटिल अंडमान से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। एमवी कालीघाट कल 3 जुलाई को श्रीविजयपुरम से सवेरे 7 बजे लिटिल अंडमान होते हुए कार्निकोबार के लिए रवाना होगा। जलयान 4 जुलाई को शाम 4 बजे कार्निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्रीविजयपुरम वापस आएगा। नालंदा जहाज 7 जुलाई को सवेरे 9 बजे नानकौरी होते हुए कैंबल बे के लिए श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जहाज 9 जुलाई को सवेरे 8 बजे कैंबल बे से छूटकर नानकौरी होते हुए श्रीविजयपुरम वापस लौटेगा। इस जहाज के इन्हीं स्थानों के लिए अगली यात्राएं 14, 21 और 28 जुलाई को होंगी। एमवी रानी लक्ष्मी माया बंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल सवेरे 7 बजे श्रीविजयपुरम से रवाना होगा। इस जलयान की वापसी 4 जुलाई को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर माया बंदर होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 बजे श्रीविजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान शहीद द्वीप से दोपहर 1 बजे स्वराज द्वीप के लिए और स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2:30 पर श्रीविजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी स्ट्रीट आइलैंड स्वराज द्वीप के लिए आज दिन में 11:30 पर श्रीविजयपुरम से छूटेगा। जलयान आज ही स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2 बजे शहीद द्वीप के लिए और शहीद द्वीप से दोपहर बाद 3:30 पर श्रीविजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर बाद 2:30 पर श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जलयान की वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी रंगत आज शाम 5 बजे श्रीविजयपुरम से रवाना होगा। जलयान कल 3 जुलाई को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप व लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल 3 जुलाई को सवेरे 6 बजे श्रीविजयपुरम से छूटेगा। जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्रीविजयपुरम वापस लौटेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा कल सवेरे 6:15 पर श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जलयान की वापसी कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप के लिए कल 3 जुलाई को सवेरे 6:15 पर श्रीविजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा कर

करेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से छुटेगा। ये जलयान शहीद द्वीप से दोपहर 1 बजे स्वराज द्वीप और स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी रंगत कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छुटेगा। ये जलयान कल ही स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2 बजे शहीद द्वीप और शहीद द्वीप से 3:30 पर श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी करेगा। श्रोताओं, अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्रीविजयपुरम केंद्र से। इस समय सवेरे के 6:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष।

इंद्रधनुष के इस कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पत्ता जो पेड़ से टूट जाए, हवा उसकी मंजिल तय करती है। पत्ता जो हरा हो, पेड़ की शान बढ़ा देती है। पत्ता जो सूख जाए, मौसम बदलने का इशारा देता है। और पत्ता जो पेड़ से जुड़ा रहे, वही सबसे ज्यादा हरा भरा रहता है। तो दोस्तों, आज हम इसी पत्ते को लेकर हाजिर है आपकी खिदमत में। दोस्तों, प्यार का सबसे खूबसूरत एहसास तब होता है जब शब्द कम पड़ जाते हैं और भावनाएं खुद बोलने लगती है। कई बार अपना दर्द या अपना प्यार दुनिया समझे या ना समझे, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रकृति का हर रंग, हर फूल, हर पत्ता और बाग का हर कोना हमारी कहानी जानता है। इसी एहसास को बेहद खूबसूरती से बयान करता ये गीत।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे पल देती है जब लगता है कि पूरी प्रकृति हमें अपने पास बुला रही है। ये हवा की ठंडी छुअन, ये हरे भरे पेड़, ये खिलते हुए फूल, सब कुछ मानो दिल से बातें कर रहा हो। ऐसा लगता है जैसे हर पत्ता, हर शाखा और हर हवा का झोंका हमें अपने साथ झूमने के लिए कह रहा हो।

दोस्तों, प्यार जब गहरा हो जाता है तो हर आहट उसी की लगती है। कोई पत्ता भी हिले तो दिल बस उसी का नाम लेता है। इंतजार भी आदत नहीं, इबादत बन जाता है। आंखें हर राह पर सिर्फ उसी को ढूंढती रहती है। और जब मोहब्बत सच्ची हो तो दिल को मंजिल ढूंढनी नहीं पड़ती। उसका प्यार खुद ब खुद हमें उसकी तरफ खींच लाता है।

0: इंद्रधनुष कार्यक्रम का आज का ये सफर शबाना के साथ बस इतना ही, होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे जो केंद्रित था पत्ता शीर्षक पर, जिसे प्रस्तुत कर रही थी शबाना बेगम। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:30 में है। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की 287 कड़ी। गायक कलाकार हैं श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठे।

श्री राम की महिमा का गुणगान करते हुए हनुमान अपने को मात्र उनका एक दूत बताते हैं। वे रावण को चेतावनी देते हैं कि राम से द्रोह करने वाले की रक्षा हजारों शंकर, ब्रह्मा तथा विष्णु भी नहीं कर सकते, किंतु पवन पुत्र के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति युक्त वचन सुनकर भी कुपित रावण उस वानर का वध करने की आज्ञा देता है। उसी समय मंत्रियों सहित विभीषण वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, दूत का वध करना नीति संगत नहीं है। रावण हनुमान का उपहास करते हुए उनका अंग भंग करके छोड़ देने का आदेश देता है। चूंकि वानर को अपनी पूंछ से अत्यधिक मोह होता है, इसलिए हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधकर आग लगा दी जाती है।

श्रोताओं, अभी आप श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठे की आवाजों में रामचरितमानस गान की 287 कड़ी सुन रहे थे। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:40 हुए हैं। वतन के गीत कार्यक्रम के तहत आइए अब सुनते हैं चंद देशभक्ति रचनाएं।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:50 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं मौसम की जानकारी और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार द्वीप समूह में कहीं कहीं पर वर्षा हुई। जनसेवाओं को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि आज द्वीपों के एक और दो स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा, साथ ही बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में यह बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय इलाकों में वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। समुद्र काफी अशांत रहेगा। ऐसी स्थिति में मछुआरों को 4 जुलाई तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। ये थी मौसम की जानकारी और अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सवेरे 7 बजे सुनिए जनसूचनाएं, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का समय रहेगा 7:05। सवेरे 7:15 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा देश रागनी, और इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूली बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में सवेरे 7:30 पर पर्यावरण कार्यक्रम होगा, जिसके तहत आप श्रीमती मोनी दीपा चौधरी की वार्ता सुनेंगे। विषय रहेगा वन महोत्सव। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे मीनू पुरुषोत्तम और मेहदी हसन। फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने का आनंद लीजिए सवेरे 9 बजे। सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में MS शीला का कर्नाटक शैली में गायन प्रसारित किया जाएगा। SMS माई चॉइस फरमाशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है सवेरे 10 बजे। दिन के 11 बजे प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCRT। भूली बिसरे गीत का समय रहेगा दिन के 11:30। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम के तहत विश्व खेल पत्रकार दिवस तथा वन महोत्सव सप्ताह पर चर्चा होगी। मलयालम कार्यक्रम के अंतर्गत दोपहर 12:30 पर वन महोत्सव सप्ताह पर चर्चा और फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप तलत अजीज और गुलाम अली को सुनेंगे। फरमाशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दोपहर 1:30 पर आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ ही प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके अंतर्गत फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा और नॉन स्टॉप म्यूजिक। और 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम सुनिए यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा की शुरुआत होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा टी टॉप गांव के सदस्यों द्वारा पुराने गीत और विश्व खेल पत्रकार दिवस पर चर्चा की जाएगी। शाम 4:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम सुनिए शाम 4:45 पर बहारों की शाम। शाम 5 बजे सुनिए तमिल कार्यक्रम। बांग्ला कार्यक्रम में शाम 5:30 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा चिरंतनी। शाम 6 बजे किसानवाणी कार्यक्रम में डॉक्टर वाई रामाकृष्णा से की गई बातचीत आप सुनेंगे। विषय रहेगा मृदा स्वास्थ्य। लेखिका श्रीमती मीना आनंद का लिखा नाटक आप सुनेंगे बदलते प्रतिमान शाम 6:30 पर। संध्या 7:05 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं सुनिए संध्या 7:15 पर। संध्या 7:20 पर चंद फिल्मी गीत आप सुनेंगे, कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। युवाणी के तहत संध्या 7:30 पर पत्रिका कार्यक्रम आप सुनेंगे युवा संसार। इसके अतिरिक्त सुनिए रूपक वन प्रकृति से हमारा प्रेम तथा वन महोत्सव के अवसर पर वार्ता होगी चलो मिलकर हरियाली बांटे। रात्रि 8 बजे आपके मनोरंजन के लिए पेश किया जाएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। रोजगार

समाचार व गौरवगान सुना जा सकता है रात्रि 8:30 पर। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड, रात्रि 9:45 पर इनसाइट्स कार्यक्रम तथा रात्रि 10 बजे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तथा इसी बीच रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानेताकाई चेत्यनया सह वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखर सम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणाम् आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकाइची इत्येतस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारत जापानयोः मध्ये विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् अग्रे वर्धन दिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापक चर्चायाः आशां करोति, यया भारत जापानयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 एई राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते षट्मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य चतुर्मार्गीय अभिगमन नियन्त्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः षड् मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: विकसित भारत जी रामजी अधिनियमस्य 25.2 अन्तर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि।

0: विकास मन्त्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25-उत्तरैकशत दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000+ गणना प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदातृ सूच्याः विशेष गहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000+ प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कन्दुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरण्ड कप इत्यस्य 35-उत्तरैकशततमं संस्करणं मासस्यास्य 25-दिनांकात् कोलकातायाम् आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:01 हुए हैं। जन सूचनाएं। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और इसके आसपास के इलाकों में 2.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 94% तथा न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 30.5 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 4:59 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:47। और अब सुनिए विमान संबंधी सूचनाएं। एयर इंडिया से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचने की संभावना है। यही विमान श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी वापसी उड़ान भरेगा दिन के 11:40 पर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

इसी के साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज सवेरे 7:15 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा देश रागनी, और इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में सवेरे 7:30 पर पर्यावरण कार्यक्रम होगा, जिसके तहत आप श्रीमती मोनी

0: दीपा चौधरी की वार्ता सुनेंगे। विषय रहेगा वन महोत्सव। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे मीनू पुरुषोत्तम और मेहदी हसन। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी नियमित और निजी छात्रों के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की अधिसूचना जारी की है। सर्वोच्च

0: 438 दशमलव 6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी नियमित और निजी छात्रों के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की अधिसूचना जारी की है। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे में दावों को एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। द्वीप समूह में वन महोत्सव के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों के आयोजन किए गए और EIA अधिसूचना 2006 के प्रावधानों के अनुसार गैस आपूर्ति अवसंरचना परियोजना पर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी नियमित छात्रों के लिए संबंधित स्कूलों द्वारा उम्मीदवारों की सूची के ऑनलाइन सबमिशन और निजी उम्मीदवारों द्वारा स्वयं CBSE पोर्टल पर आवेदन फॉर्म जमा करने की अधिसूचना जारी कर दी है। फॉर्म 8 जुलाई तक बिना विलंब शुल्क के जमा किए जा सकते हैं। कक्षा 12वीं के वे सभी नियमित छात्र जिन्हें कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है या जो अपने अंकों में सुधार के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें स्कूल प्रशासन द्वारा आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए तुरंत अपने संबंधित स्कूलों से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी निजी उम्मीदवारों को भी कक्षा 12वीं की पूरक या सुधार परीक्षा के लिए निर्धारित समय सीमा तक बिना विलंब शुल्क के CBSE पोर्टल cbse.gov.in के माध्यम से आवेदन करने को कहा गया है। परीक्षा 28 जुलाई को आयोजित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। सरकार ने कल देश में व्हाट्सएप पर यूज़र नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूज़र नेम फीचर के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूज़र नेम फीचर शुरू न किया जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उच्च शिक्षण संस्थान के घटक महाविद्यालय महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर में विभिन्न 7 स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 7 जुलाई कर दिया गया है। इच्छुक विद्यार्थी 7 जुलाई तक कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में ODL और ऑनलाइन मोड में सभी कार्यक्रमों के जुलाई सत्र के लिए पुनः पंजीकरण की तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार समर्थ इग्नू पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। वन महोत्सव के अवसर पर कल केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने दक्षिण अंडमान वन प्रभाग के सहयोग से अपने 11 शर्मा फार्म में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने, हरित क्षेत्र बढ़ाने और वृक्षारोपण के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने की राष्ट्रीय पहल के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर अपने संबोधन में क्यारी के निदेशक डॉ. जयसुंदर ने हरित क्षेत्र को बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधन

संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ कृषि परिदृश्यों में वृक्षारोपण को एकीकृत करने के महत्व पर जोर दिया। वन विभाग ने इस वृक्षारोपण अभियान के लिए 750 पौधे उपलब्ध कराए। इस दौरान दक्षिण अंडमान वन प्रभाग ग्यारहचरमा रेंज के रेंज अधिकारी इरुला राजन ने जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिक बहाली और वनीकरण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने में वन महोत्सव के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कुल 174 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उधर पर्यावरण एवं वन विभाग के तहत जैविक उद्यान चिड़िया टापू में भी वृक्षारोपण अभियान के साथ वन महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक रवि होरो ने वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन करते हुए कहा कि वन महोत्सव केवल एक वृक्षारोपण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है जो वनों की रक्षा और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना जगाता है। उन्होंने देशव्यापी अभियान एक पेड़ माँ के नाम पर प्रकाश डालते हुए प्रत्येक नागरिक, विशेष रूप से युवा पीढ़ी से वन संरक्षण में भाग लेने और पर्यावरण के अनुकूल स्थायी प्रथाओं को अपनाने का आग्रह किया। इस दौरान सरकारी प्राथमिक विद्यालय चिड़िया टापू के छात्रों और शिक्षकों सहित विभाग के कर्मचारियों ने उद्यान परिसर में स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA अधिसूचना 2006 संशोधित के प्रावधानों के अनुसार मेजर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की प्रस्तावित गैस आपूर्ति अवसंरचना परियोजना पर संबंधित व्यक्तियों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य होप टाउन फरारगंज तहसील दक्षिण अंडमान जिले में स्थित 50 मेगावाट के पावर प्लांट को रीगैसीफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस की आपूर्ति करना है। पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के ड्राफ्ट दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त कार्यालय, दक्षिण अंडमान जिला परिषद, ग्रामीण विकास एवं पंचायत निदेशालय, जिला उद्योग केंद्र, पंचायत सचिव कार्यालय, अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय चेन्नई के क्षेत्रीय कार्य के अलावा प्रशासन तथा अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। टिप्पणियां और सुझाव 30 दिनों की अवधि के भीतर ANPCC कार्यालय को ईमेल के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। पर्यावरण एवं वन विभाग के तहत चिड़िया टापू स्थित जैविक उद्यान की ओर से अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए ट्रैंक्विलाइजर गन के संचालन पर एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह मुख्य वन्य जीव वार्डन रवि होरो ने किया। इस अवसर पर मुख्य वन संरक्षक डॉ एस दिनेश कन्नन और वन संरक्षक जोजू पी अलापट उपस्थित थे। कार्यशाला में दक्षिण और मध्य उत्तर अंडमान जिलों के सभी क्षेत्रीय और वन्य जीव प्रभागों के अधिकारियों, पशु चिकित्सा कंपाउंडरों, महावतों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में सेफ ट्रैंक्विलाइजेशन प्रैक्टिस नामक एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। द डेली टेलीग्राम्स ने राष्ट्रीय स्तर पर जी राम जी अधिनियम लागू होने के समाचार को अपनी पहली हेडलाइन बनाई है। द्वीप समाचार ने डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन, सार्वजनिक सेवा वितरण और नागरिकों के जीवन पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव पर विचार करने के समाचार को प्रमुखता से छापा है। अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने सांसद द्वारा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मत्स्य पालन क्षेत्र को कृषि के समकक्ष लाभ देने के निर्णय को लागू करने के समाचार को अपने अखबार में जगह दी है। इन्फो इंडिया ने चिड़िया टापू उद्यान में वन महोत्सव मनाए जाने के समाचार को, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने उत्तरी अंडमान के निवासियों द्वारा बेहतर सड़क और समुद्री कनेक्टिविटी के मांग के समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी नियमित और निजी छात्रों के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की अधिसूचना जारी कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। द्वीप समूह में वन महोत्सव के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम

0: के आयोजन किए गए और EIA अधिसूचना 2006 के प्रावधानों के अनुसार गैस आपूर्ति अवसंरचना परियोजना पर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागनी।

देश रागनी कार्यक्रम में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, हमारा भारत वीरों की भूमि है। यहाँ के जवान अपनी बहादुरी, त्याग और देश प्रेम से पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। यही भावना इस सदाबहार गीत में भी झलकती है। इसकी मधुर धुन और जोशीले बोल हमें अपने देश की संस्कृति, एकता और शौर्य की याद दिलाते हैं।

कल से सीख लेकर आगे बढ़ना ही जीवन की असली पहचान है। हमारा देश भी इसी सोच के साथ हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज का भारत आत्मविश्वास, विकास और नई उम्मीदों का भारत है।

श्रोताओं, हमारा तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के सम्मान, स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। इसकी शान बनाए रखने के लिए अनगिनत वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। जब भी तिरंगा ऊंचा लहराता है, हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है।

श्रोताओं, अभी आप देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागिनी सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

श्रोताओं, आइए आज की सुबह की शुरुआत करते हैं सकारात्मक सोच, नई ऊर्जा और ढेर सारी मुस्कुराहटों के साथ। स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में। श्रोताओं, प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार नहीं बल्कि हमारी सबसे अनमोल धरोहर भी है। स्वच्छ हवा, निर्मल जल और हरे भरे वन, यही स्वस्थ और समृद्ध जीवन की पहचान है। श्रोताओं, आइए अब पर्यावरण कार्यक्रम के तहत वन महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमती मोनी दीपा चौधरी की ये पूर्व प्रसारित वार्ता सुनते हैं।

इसमें दो राय नहीं है कि भारत उत्सवों, त्योहारों और मेलों का देश है। रोचक बात ये भी है कि ये सब त्यौहार कहीं ना कहीं पर्यावरण से अवश्य जुड़े हुए हैं। पर्यावरण के प्रति जन चेतना जगाने की दृष्टि से ऐसे मौके भी निर्धारित किए गए हैं जिन्हें पर्यावरण पर्व की श्रेणी में रखा गया है। अगर इनका आयोजन पूरी निष्ठा और समर्पण से किया जाए तो निश्चित ही हम पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में सफल हो सकते हैं। वन महोत्सव यानी वृक्षों का महान त्यौहार, वृक्षारोपण अभियान द्वारा जन जन में पेड़ पौधों के प्रति जागरूकता पैदा करने का एक ऐसा ही पावन पर्व है। इस महोत्सव का सूत्रपात श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने 1950 में किया था, जब वे भारत सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री के पद पर आसीन थे। उसी वर्ष से ही पूरे देश भर में प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में यह त्यौहार मनाया जाता है। खास बात यह है कि यह त्यौहार पूरे देश में बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। यह एक वार्षिक उत्सव है जिसमें पूरे देश में वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है। यह महोत्सव जुलाई महीने में मनाया जाता है क्योंकि जुलाई अगस्त का महीना वर्षा ऋतु का होता है और पेड़ पौधों के उगाने के लिए यह नमी का मौसम अच्छा माना जाता है। इस मौसम में पेड़ पौधे जल्दी उगते हैं। यह समारोह आंगनवाड़ी, पंचायत भूमि, खेलों के मैदान, विद्यालयों तथा महाविद्यालयों, सरकारी तथा निजी कार्यालयों के प्रांगण में यानी जहां भी संभव हो वृक्षारोपण करके मनाया जाता है। कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि वन महोत्सव क्यों मनाना चाहिए, आखिर इसकी आवश्यकता क्या है। आज हम आधुनिक बनने की होड़ में वनों की उपयोगिता को ही भूलते जा रहे हैं। बड़े बड़े शहर, हाईवे, सड़क, यातायात, फैक्ट्रियां इत्यादि बनाने की चाहत में वनों को ही समाप्त करते जा रहे हैं, जिससे लाखों पशु पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं। एक समय था जब सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाट के साथ होती थी, घर के आंगन में चिड़िया दाना चुगने आया करती थी, लेकिन आज उन आवाज़ों की जगह ट्रैफिक के शोर शराबों ने ले ली है। पेड़ों की कटाई के कारण बड़ी संख्या में पशु पक्षी, कीट पतंगे बेघर हो गए हैं, तो कुछ का तो नामो निशान भी खत्म हो गया है। पेड़ों की ठंडी हवाओं की जगह आज गाड़ियों से निकलने वाले धुएं ने ले ली है। पेड़ों की छांव की जगह फैक्ट्रियों के कूड़े करकट ने ले ली है। आज हम स्वच्छ हवा में सांस लेने तक को तरस गए हैं। उल्लेखनीय है कि सामाजिक कार्यकर्ता अमृता देवी विश्नोई ने कहा था कि यदि किसी पेड़ को

किसी के सिर की बलि देकर भी बचाया जाता है तो बचाना चाहिए। आज भारत में वृक्षों के संरक्षण के लिए कई त्यौहार उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद पेड़ों के लगातार काटे जाने से हमें कई नुकसान भी हो रहे हैं, जैसे बरसात के दिनों की घटती संख्या और वर्षा की घटनाओं की तीव्रता के पीछे पेड़ों को अत्यधिक मात्रा में काटे जाना है। भारत में लंबे समय से बाढ़, सूखा, गर्मी की लहरें, चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं ने अपने पैर पसारे हुए हैं। कभी तेज़ गर्मी से लोग तिलमिनाने लगते हैं तो कभी अंधाधुंध बारिश से कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। नदी नाले सूखते जा रहे हैं। आए दिन प्राकृतिक आपदाएं अपनी जड़ें जमा रही है। हम माने या ना माने, लेकिन पेड़ों की कटाई से नुकसान हमें ही हो रहा है। पेड़ों की आवश्यकता हमें क्यों है, इस बात का उदाहरण देश के तटीय क्षेत्रों में लगाए गए घने पेड़ों से है, जिसने 2004 में आए सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को कम करने में मदद की। उन्होंने आगामी लहरों को अवशोषित कर लिया और बड़ी संख्या में मानव निवासों को संरक्षित किया। वृक्ष हमारे लिए, जानवरों के लिए, जलवायु संतुलन, जल स्रोत को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। वृक्षों को बचाने के लिए लड़ने वाले लोग भी वाकई में शानदार है। न केवल बचाने बल्कि वृक्षों को कटने से रोकने के लिए अपनी जान देने वाले राजस्थान के विश्नोई समाज के लोग प्रेरक एवं पूजनीय हैं। ऐसे लोग जो ये जानते हैं कि वृक्षों की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। 70 के दशक में उत्तर प्रदेश में चमोली, जो अब उत्तराखंड में है, के लोगों ने पेड़ों को काटे जाने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन किया था, जिसमें लोग पेड़ों के चारों तरफ एक घेरा बनाकर उससे चिपक जाया करते थे ताकि पेड़ों को काटा ना जा सके। पेड़ हमारे जीवन की कहानी का पहला अध्याय है और अगर यही नहीं होंगे तो जीवन जल्द ही खत्म हो जाएगा। हम सभी को जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जीवित रहना संभव ही नहीं है और ऑक्सीजन के लिए पेड़ की ज़रूरत है। हमारे पुरखों का कहना था कि प्रकृति का जीवन रक्षा में उपयोग करना चाहिए, न कि प्रकृति का शोषण। सभी ग्रंथों में वृक्ष के महत्व को समझाया है। कहा भी गया है कि एक जलकुंड 10 कुएं के समान है, एक तालाब 10 जलकुंड के बराबर है, एक पुत्र का 10 तालाबों जितना महत्व है और एक वृक्ष का 10 पुत्रों के समान महत्व है। वृक्ष प्रकृति की अनुपम देन है। ये पृथ्वी और मनुष्य के लिए वरदान है। ये देश की सुरक्षा और समृद्धि में भी सहायक होते हैं। पेड़ों का महत्व आदिकाल से रहा है। इन्हें हमारे देश में धार्मिक एवं आयुर्वेदिक रूप से भी काफ़ी महत्व दिया जाता है, यानी पूजा से लेकर दवा और लकड़ी से लेकर हवा तक इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। पेड़ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं, वायु गुणवत्ता में सुधार करते हैं, जलवायु में सुधार करते हैं, यहाँ तक कि पानी का संरक्षण भी करते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि ये मिट्टी का संरक्षण करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के मुताबिक हमारे देश में 33% वन की उपलब्धता पर्यावरण के लिए अनुकूल होती है, जबकि हमारे केवल 24.5% वन शेष बचे हैं। कोरोना की विकरालता हो या पर्यावरण संकट, अपेक्षा है प्रत्येक व्यक्ति अपना दायित्व समझे और इस समस्या का सही समाधान ढूंढे। महात्मा गांधी ने कहा, सच्ची सभ्यता वही है जो मनुष्य को कम से कम वस्तुओं के सहारे जीना सिखाए। प्रकृति एवं पर्यावरण की तबाही को रोकने के लिए बुनियादी बदलाव ज़रूरी है और वह बदलाव सरकार की नीतियों के साथ जीवन शैली में भी आना ज़रूरी है। हम अपने आसपास पेड़ पौधे लगाकर प्लास्टिक का उपयोग ना करके पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। वन महोत्सव का त्यौहार पर्यावरण को बचाने के लिए एक सुंदर पहल है, जिसके लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए। वन हमारी प्रकृति द्वारा मानव जाति को प्रदान की जाने वाली बेहद महत्वपूर्ण सुविधा है। यह हमें विभिन्न आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है और हमारी कई ज़रूरतों को पूरा करता है। यह विभिन्न जीवों का घर भी है और तमाम तरह की जनजातियों का भी है। वन महोत्सव के दौरान हर नागरिक से यह उम्मीद की जाती है कि वो कम से कम एक पौधा तो अवश्य लगाएं। इसके अलावा पेड़ों के संरक्षण से लाभ और वृक्षों को काटने के कारण होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। यह पेड़ हमसे कुछ लेते नहीं हैं बल्कि हमें एक नया जीवन देते हैं। पूरे देश में वन महोत्सव के जरिए विलुप्त हुए वनों को फिर से बनाए रखने के लिए वनीकरण अभियान शुरू किए गए हैं। आमतौर पर स्थानीय पेड़ लगाए जाते हैं क्योंकि वे आसानी से स्थानीय परिस्थितियों में अनुकूलित होते हैं, पर्यावरण प्रणालियों में एकत्रित होते हैं और ज़्यादा समय तक जीवित रहने का दम रखते हैं। इसके अलावा ऐसे पेड़ स्थानीय पक्षियों, कीड़ों और जानवरों को भी समर्थन देने में सहायक होते हैं। राज्य सरकारें और नागरिक निकाय स्कूलों, कॉलेजों, अकादमी

धार्मिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों के जरिए आज पेड़ों को एक बार फिर से बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम भी वृक्षों को बचाने और लगाने के लिए अपनी अपनी भूमिका अदा करें। पेड़ पौधे लगाने से कई ज़्यादा आवश्यक है पौधों की देखभाल करना। इसलिए पौधे लगाने से पहले पौधारोपण की सुरक्षा के प्रबंध, जैसे पानी देना व खरपतवार निकालना आदि सुनिश्चित किए जाए। चाहे थोड़ी ही वृक्ष क्यों न लगाए जाए, अन्यथा वृक्षारोपण अभियान द्वारा जन जन में पेड़ पौधों के प्रति जागरूकता लाने का यह पावन पर्व समय, धन व शक्ति के व्यर्थ गंवाने का प्रतीक बनकर रह जाएगा। अंततः यही अनुरोध है कि आइए हम सभी एक जिम्मेदार पर्यावरण रक्षक बनकर वनों की रक्षा करें तथा पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को शुद्ध बनाएं। जरूरी यह है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर पौधारोपण में बल दें और सिर्फ दिखाने के लिए वृक्षारोपण ना करें, यथासंभव पौधों वृक्षों को लगाकर उनकी सुरक्षा भी करें। मानव जाति के भविष्य के लिए वृक्षों का होना अत्यंत आवश्यक है। जब होंगे वन सुरक्षित, तभी होगा हमारा कल सुरक्षित।

श्रोताओं, अभी आप वन महोत्सव के अवसर पर श्रीमती मोनी दीपा चौधरी की ये पूर्व प्रसारित वार्ता सुन रहे थे। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में जिगरी दोस्त फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी की रचना है व धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

0: श्रोताओं, गुड मॉर्निंग अनुमान कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटी सी ब्रेक के बाद।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।

श्रोता, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। श्रोताओं, आज 2 जुलाई को पूरे विश्व में खेल पत्रकार दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन उन खेल पत्रकारों को समर्पित है जो अपनी निष्पक्ष, सटीक और प्रेरणादायक रिपोर्टिंग के माध्यम से खेल जगत की हर उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाते हैं। खिलाड़ियों की मेहनत, संघर्ष और सफलता की कहानियों को समाज के सामने लाने में खेल पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह दिन उनके समर्पण, ईमानदारी और खेलों के प्रति जुनून को सम्मान देने का अवसर है।

जैसी करनी वैसी भरनी फिल्म में अभी आप कुमार सानू और सपना मुखर्जी को सुन रहे थे। शम्मी मलिक के बोल को शुरू में फिरोया था राजेश रोशन ने। कार्यक्रम के अंत में अब पेश है इंदिवर का लिखा एवं राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया खुद गर्ज फिल्म का गीत। गाने वाले कलाकार हैं साधना सरगम और मोहम्मद अजीज़।

साधना सरगम और मोहम्मद अजीज़ के गाए खुदगर्ज फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान अब यहीं पर समाप्त होता है।

श्रोताओं, अभी आप गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिस

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सुनाए तकाईजी के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सुनाए तकाईजी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों के 2 तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईजी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी

हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी प्वाइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी प्वाइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण

0: जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बम्पर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं मीनू पुरुषोत्तम और मेहदी हसन। तो कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं मीनू पुरुषोत्तम की आवाज में ये गीत।

श्रोता, इस वक्त आप आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। और आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं मीनू पुरुषोत्तम और मेहदी हसन। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मेहदी हसन की आवाज़ में ये गज़ल, कलाम कतिल शिफाई का।

श्रोताओं, अभी आप मेहंदी हसन की आवाज में इस गजल का लुत्फ ले रहे थे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार थे मीनू पुरुषोत्तम और मेहंदी हसन।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय सवेरे के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं याद रखेगी दुनिया फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने। समीर के बोल को सुरों में फिरोया है आनंद मिलिंद ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं खून पसीना फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। अनजान के बोल हैं व धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं खून पसीना फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। अनजान के बोल हैं व धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: श्रोताओं, गीतों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
3: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
4: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: सीमा, सीमा उठो।
6: क्या हुआ?
5: चेकअप के लिए जाना है ना।
6: सोने दो ना।
5: उठो।
6: अगले हफ्ते चल पड़ते, थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा।
7: गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके।
8: समय का मूल,
9: HIV पे कंट्रोल।
7: गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं।
0: श्रोता, इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा और आर.डी. बर्मन का संगीतबद्ध किया रॉकी फिल्म का गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने।

श्रोताओं, अभी आप रोमांस फिल्म का ये गीत सुन रहे थे जिसे गाया था लता मंगेशकर और अमित कुमार ने। आनंद बख्शी की रचना थी व धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं रोमांस फिल्म का ये गीत। गायक कलाकार है लता मंगेशकर और अमित कुमार, गीतकार है आनंद बख्शी तथा संगीतकार है आरजी बर्मन।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, अपनी पहली सभा को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं MS शीला का कर्नाटक शैली में गायन। इनके साथ वायलिन पर M नागराज, मृदंगम पर AV आनंद और घटम पर BK वेंकटराम ने संगति की है। तो लीजिए पहले सुनिए MS शीला का गाया राग मोहनम, ताल है आदि, कृति त्यागराजा की।

0: अभी आप MS शीला का गाया राग मोहना सुन रहे थे।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं MS शीला का गाया राग अटाना, जो आदि ताल में निबद्ध है। कृति जया चम्मा राजा ओडियार की।

राग अटाना के बाद अंत में सुनते हैं इनका गाया राग बिहाग, जो रूपक ताल में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप M.S. शीला का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए आपके SMS पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम SMS माई चॉइस।

कार्यक्रम SMS माई चॉइस में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, अगर आप अपने पसंद के गीतों को हमारे इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर SMS करें। हमारा नंबर है 9474234000। कार्यक्रम का आगाज करते हैं और लेते हैं पहला SMS जो हमें उदयपुर राजस्थान से भेजा है सुशील यादव, रेणु यादव, मोहित यादव, नमिता यादव और कार्तिक यादव ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म जब वी मेट का ये गाना, जिसे गाया है उस्ताद रशीद खान ने। गीत को लिखा है इशाद कामिल ने तथा संगीत प्रीतम का है।

अगला गीत के लिए हमें SMS भेजा है नोएडा दिल्ली से अनिल कुमार और प्रियंका सिंह ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म सौतन की बेटी का ये गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीत सावन कुमार के तथा संगीत वेद पाल की।

विम्बल्टन से सोनी, संध्या और दीप्ति सुनना चाहते हैं फिल्म सरगम का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं इनकी एसएमएस पर ये प्यारा सा गीत।

हम तो मोहब्बत करेगा, इस फिल्म के गीत को गाया है सोनू निगम, सुनिधि चौहान और साथियों ने। गीत को सुनना चाहते हैं 11 चरामा से जयराम, दगदीश कुमारी, जयंत और जयंती। गीत मजरू सुल्तानपुरी के तथा संगीत अनु मलिक का है।

शादीपुर से नवीन लाल, पूजा लाल और सतीश कुमार ने हमें एसएमएस किया है फिल्म कर्ज के गीत के लिए, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने तथा संगीत बद किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं इनकी एसएमएस पर ये गीत।

यासिर देसाई के गाए फिल्म दादा के गीत को सुनने के लिए हैडो से लक्ष्मी राव, जोगा राव और सिद्धार्थ राव ने हमें SMS भेजा है। गीत कुलवंत जैनी का है तथा संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

नया गांव से पूजा लाल और मुकेश लाल ने हमें एसएमएस किया है लता मंगेशकर के गाए फिल्म गाइड के लिए। गीत को लिखा है शैलेंद्र ने तथा संगीत एसडी बर्मन का है।

कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में सुनते हैं फिल्म हमें राही प्यार के का ये गाना। गीत समीर का तथा संगीत नदीम श्रवण का है। एसएमएस करने वाले श्रोता हैं डेयरी फॉर्म से जगदीश और गीता। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गाना।

लीजिए अब सुनिए बुनियादाबाज से महेश राम मोतीराम और बेला राम की एसएमएस पर फिल्म हम साथ साथ है का ये गीत। गायक कलाकार है हरिहरन और घनश्याम वासवानी। गीत लिखे है रविंद्र रावल ने तथा संगीत से सजाया है राम लक्ष्मण ने।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म हमराज का ये गाना। गीत सुधाकर शर्मा का तथा संगीत हेमेश रेशमिया का है। जंगली घाट से हमें SMS किया है इस गीत के लिए रितिका लाल, गीता लाल, राजा और तनिष्क लाल ने। आइए सुनते हैं इनकी SMS पर ये प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम में अपने पसंदीदा गीतों को सुनना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर SMS करें। हमारा नंबर है 9474234000। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1319वीं कड़ी।

0: बदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम

0: मैं आपका स्वागत करती हूँ।
1: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
0: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
0: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है।
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
0: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
0: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
1: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
0: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा, लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
0: तो दीजिए हिंट।
1: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
0: जी।
1: इसे तराशा जाता है।
0: और
1: हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
0: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
1: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
0: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
1: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
0: जी।
1: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
0: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
1: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
0: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
1: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
0: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओं, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
1: पता है श्रोताओं, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
0: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए एक छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
1: लेकिन इसे बनाने की

0: विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
1: तो श्रोताओं, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास।

0: जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
2: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
6: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
4: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
6: आहा, तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
4: क्यों दे दूं,

0: दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है
1: भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
1: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
4: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
6: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
0: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
6: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
6: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
2: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
0: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
2: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
6: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
7: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
6: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
7: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
3: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
8: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा? गद्दी पे बैठ कर
9: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
7: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
0: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
3: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
7: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
2: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
3: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।

0: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
1: महाराज की जय हो।
2: महाराज की जय हो।
3: महाराज की जय हो।
4: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
5: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं चल चलूं।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।

0: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50, जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा। लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
1: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया है।
0: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था, आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
2: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
3: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
2: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
3: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
4: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
5: हम सब अच्छे हैं।
4: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
5: जी, हम तैयार हैं।
4: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
6: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
3: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
4: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
2: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
4: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
3: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
4: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
3: जी, मेरा नाम श्रुति है।
4: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
7: सूर्य ग्रह है या तारा?
4: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
3: सर, मेरा नाम सुमित है। सूर्य एक ग्रह है।
4: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई। सूर्य असल में एक तारा है।
5: अच्छा सर।
2: सर, मेरा नाम सोहम है। मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
3: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
4: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
2: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
4: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
2: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
4: शाबाश, समझ गए ना?
5: जी सर।
3: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
4: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
2: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
4: जरूर बच्चों। देखो, आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक

0: ज्ञान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
1: जी जी सर।
0: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
2: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य ज्ञान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
0: हाँ, सही कहा। आदित्य ज्ञान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
1: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
3: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
1: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
4: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
2: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
1: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
2: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
5: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
6: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1319वीं कड़ी सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 11:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

हेमंत कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण के गीत रचना, संगीत सी रामाचंद्रा का, फिल्म का नाम है अनारकली।

ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में तैयार आइए सुनते हैं मजरू की गीत रचना, जिसे गाया है गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस 55।

फिल्म पागल प्रेमी में अब सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

लीजिए अब सुनिए शारदा की आवाज़ में फिल्म हरे कांच की चूड़िया का ये गाना। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने तथा संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

लीजिए अब सुनिए मिर्ज़ा गालिब फिल्म का ये गाना, गायिका है सुरैया, गीत रचना मिर्ज़ा गालिब की तथा संगीत गुलाम मोहम्मद का।

मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में सुनते हैं फिल्म दिल ही तो है का ये गाना। साहिर लुधियानवी के बोल को सुरों में पिरोया है रोशन ने।

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री ताकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी

0: रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
1: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
2: कुछ सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है, हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is holding annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. The summit is an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Earlier, Prime Minister Takaichi was accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan today. Prime Minister Modi was also present on the occasion. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. India has reiterated its firm stand that terrorism cannot be justified under any circumstances and called for united global action to eliminate the menace. Addressing the UN General Assembly during the adoption of the 9th review of the United Nations Global Counterterrorism Strategy, India's permanent representative to the UN, P. Harish, said, "A terrorist is a terrorist," and emphasized that the counterterrorism efforts should not be weakened by false equivalences.

लीजिए, अब सुनिए गुलाम अली की आवाज़ में कैसरुल जाफरी का कलाम।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप तलाक अजीज और गुलाम अली की आवाज़ों में चंद गज़लें सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब आरंभ होता है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में आप सभी का स्वागत है। आप अगर अपने पसंदीदा गानों को हमारे इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर फरमाइश भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर 9474234000। चलिए दोस्तों, लेते हैं कार्यक्रम का पहला गाना जो हमें महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अपर्णा जायसवाल, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति जायसवाल ने भेजा है। ये सुनना चाहते हैं फिल्म साथी का ये प्यारा सा गीत। गायक कलाकार हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर। आइए सुनते हैं इनके फरमाइश पर ये गाना।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में सुनते हैं फिल्म अपना देश का ये गाना। फरमाइश भेजने वाले श्रोता है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नलवाकर, निर्मला और विशाल। मलकापुर से नारायण एगले, सोपान ताड़के और आशीष मोहकर।

जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरार और नरगिश खातून सुनना चाहती हैं फिल्म बंटी और बबली का ये गीत। गायक कलाकार है अली सचिन, शंकर महादेवन और जावेद अली।

झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, बेबी चाहत और सादिया सुनना चाहते हैं फिल्म ज्वेल थीप का ये गीत। गायक कलाकार है लता मंगेशकर, भूपेंद्र और साथी।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म आराधना का गाना, गायक है किशोर कुमार। फरमाइश भेजने वाले श्रोता है मेरठगंज से दीर्घ दर्शन और कविता गौड़। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: FIFA World Cup, Belgium staged a stunning comeback to beat Senegal 3-2 after extra time in the round of 32 and qualify for the round of 16. Co-hosts US registered their first win in the knockout round after 2002. This morning, they defeated Bosnia-Herzegovina 2-0 in the round of 32 to advance into the round of 16, where they will take on Belgium. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 402 points at 77,325, while the Nifty advanced 129 points to 24,135 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Sri Amarnath Ji Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enter round of 16 in extra time victory over Senegal. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
2: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर

0: क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
1: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाईची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालटाल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावली पल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
4: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही।

0: उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले

0: सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 की बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक स्थानों में हल्की सी मध्यम वर्षा हुई। जन सेवाओं के लिए कोई सूचना नहीं है। मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय इलाकों पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिसके चलते समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 4 जुलाई तक समुद्र में ना जाएं। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक स्थानों में वर्षा होगी या छींटे पड़ेंगे। ये था मौसम का हाल। इस समय 2:32 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 MHz पर। अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: नॉन स्टॉप म्यूजिक।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी। Online applications are invited from unmarried men and women candidates for grant of short service commission in executive, education and technical branch. Last date for submission of online application is 27 July 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar.
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।

0: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने जिन फिल्मों के गाने आपको सुनवाए उनके नाम इस प्रकार है। फिल्म है चाइना गेट, फिर मिलेंगे, महाराजा, सिर्फ तुम, धड़कन, परदेस, दिल से और रॉक स्टार। इसी के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: नॉन स्टॉप म्यूजिक।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

100.9 मेगाहर्ट्स पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। 3:31 हुए हैं। कार्यक्रम यूं ही गाते रहो में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और आज मैं हूं आपके साथ आपकी सखी राजेश्वरी।

प्यार वो एहसास है जो बिना कुछ कहे दिल की बात कह जाता है। प्यार हर रिश्ते में मिठास घोल देता है। जब किसी की मुस्कान अपनी खुशी बन जाए, वही सच्चा प्यार होता है।

कोई भाषा नहीं होती, प्यार कोई भाषा नहीं होती, इसे सिर्फ दिल समझता है, इसे सिर्फ दिल समझता है। प्यार में हर पल खास बन जाता है, जब कोई अपनी हर दुआ में शामिल हो जाए, वही प्यार कहलाता है।

की पहली आहट दिल में एक मीठी सी हलचल जगा देती है। हर धड़कन एक नया सपना बुनने लगती है। यही एहसास ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बना देता है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। अपनी दूसरी सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनलाम ने एनजी रोकर हमांग एंगजी तका लमक तेलनी मीडियम वेव 438.6 मीटर 684 किलोहर्ट्स रमांग एलनी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अन्य निकोबारी प्रोग्राम तहांग मिनका तलोन ही इंग हराब

महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज इमाया बंदर नरुलकु तुमसुम का मिने ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म इमिने तसत अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस तकेतु अतंगम इंस्टीट्यूशन लगतकु एक तलुआनाय वहे आला अक जून चिंगेत नसल इप तसत आलाहंगो जुलाई चिंगेत मिन इप कैंडिडेट्स तह अप्लाई न कॉरिन न फिल नुप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नैलंगम कॉमन कॉलेज पोर्टल collegeadmission.andamannicobar.gov.in रमांग इंगम महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज इमाया बंदर अन्य तरा एर मिनकाथलून गातियन इनरे ngam igno naruhlaku tumsum ka mene re-registration imene programs taketua tangam ODL na online mode nasal ip tatane sin alango July ching admin ho tuwa yinwe students min na visit ngam samarth igno portal na register lanup mine nyere yip tahoru tamikah lonre na korin na contact ngam regional center igno nal ngam phone number 03192-242-888 hek 03192-230-111 Hawanyar orajin tane phone number 03192-242-888 hek 03192-230-111 hek elngam email ID rcpodblair@igno.ac.in ramang elngam igno anngi minkatalon मिन का तलो नि हे तरन मिने महावत कर चोग ने लग एल हो ने कुन पनाम ही एम वी कालीघाट चुलिट लंडमान त का निकुबार इत होरे सकाम इत सट कन रो त पि होरे न लग्न हेड ऑफ nga chawan इत त फैन अलांगो चिंगेत इत फैन कन रो तला हरप न रांका निकुबार सगलीटी लंडमान अनमिन अलतालय करन हवान नचु श्री विजयपुरम किरान गरन मिन हेक नमचोंग एम वी कालीघाट नचु कार निकुबार इत तसात आलाहंगो चिंगेत इत लुगन रो तला हराप न लेकन्य हेड ऑफ nga chawan इत तहेवर आलाहंगो चिंगेत इत फैन गन रो तला हराप न नरांग कार निकुबार सग लिटिल अंडमान अनमिन अलतालय करन हवान नचु श्री विजयपुरम नमचोंग नालंदा चुनन कवरी त कैम्बल बे इप्त सात आला हंगो चिंगेत इत माचुतर कन रो तपही न लेखन्य हेड वाफ nga chawan इप्त माचुतर आला हंगो चिंगेत इत हेवर कन रो तपही न रांग कैम्बल बे सक नन कवरी अनमिन अलता लय करन हवान नचु श्री विजयपुरम असुन ngर नमिन ngam chung एम वी सेंटिनल नचु लिटन नमान इप्त हुरेच सकाम इत हेवर कन रो तहत हुरेच न लेखन्य हेड वाफ nga chawan इप्त फैन आला हंगो चिंगेत इत हेवर कन रो तपहि न रांग लिटिल नमा नचु श्री विजयपुरम अनुनुन्ने मिन कातलून ही इंग हराप

0: Tigatnya, John Chrysostom, teben Blentina Lucas entah yang mana ha ang hei tin keke. Hoi hang ngatel ha angin ngasin tangamu hek in hurej eh hang rongi takasata. Ida lua na hang mirin akauksin gen rota la sakama ngayin.
1: श्रोताओं अभी आप निकोबारी कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की दूसरी कड़ी।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Pradyogik technology ke fayde aur nuksan, advantages and disadvantages of technology. Aaj ki 21vi shatabdi mein hum technology ke zindagi mein jee rahe hain. Aaj takneek ke bina jeevan ki kalpana karna mushkil hai. Parivahan ke liye hum car, bus, motorcycle, plane, train ka istemal karte hain. Apne mitron, parivar se baat karne ke liye फोन का इस्तेमाल करते हैं। मनोरंजन के लिए अब तो एलईडी टीवी हमारे पास है। रसोई में खाना, ओवन, मिक्सर, ग्राइंडर, इंडक्शन चूल्हा जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। घर की सजावट के लिए आज अनेक तरह के आधुनिक तरह के लाइट्स का इस्तेमाल होते हैं। गर्मी सर्दी के मौसम में राहत देने के लिए अब एसी, एयर कंडीशनर का इस्तेमाल बहुत प्रचलित हो गया है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हर घर में एसी रहना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज विज्ञान की मदद से टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। अब हमको बिजली, टीवी, पंखा, एयर कंडीशनर, स्मार्टफोन, कंप्यूटर जैसे आधुनिक चीजों की आदत हो गई है। हम इसके बिना नहीं जी सकते हैं। हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे प्रचलित टेक्नोलॉजी उपकरण और सेवाएं, दैट इज कॉमन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यूज बाय अस, घरेलू उपकरण, पंखा, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक पानी का मोटर, इन्वर्टर, जनरेटर, बिजली सप्लाई, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और घरेलू काम के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, कैमरा, संचार के लिए इंटरनेट सेवा, मनोरंजन के लिए टेलीविजन, सिनेमा, कपड़े धोने और सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन और ड्रायर्स, ट्रांसपोर्ट के लिए मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, ट्रेन, एरोप्लेन्स, संचार यानी बात करने के लिए फोन, टेलीफोन, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, रसोई घर के लिए ओवन, मिक्सर, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, इंडक्शन स्टोव, स्वास्थ्य लाभ के लिए दवाएं और आधुनिक चिकित्सा तकनीकी और सेवाएं जैसे एक्सरे मशीन्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स,

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: टेक्नोलॉजी के फायदे, एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। अब तो घर बैठे ट्रेन, प्लेन, बस का टिकट खरीदा जा सकता है। इसके अलावा अब अनेक ऐप से ट्रेन की स्थिति, विलंब स्थिति, अन्य जानकारी पा सकते हैं। घर बैठे शिक्षा। अब विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के कोर्स ऑनलाइन ही कर सकते हैं। इस तरह घर बैठे शिक्षा पाना संभव हुआ है। आज अनेक वेबसाइट पर लोग पढ़ाने का काम करते हैं। विद्यार्थी घर बैठे वीडियो देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। अब महंगी फीस देकर ट्यूशन कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्री कॉलिंग और फ्री वीडियो की सुविधा भी है। आज कई नेटवर्क्स कम शुल्क में अच्छी और फ्री वीडियो और कॉलिंग सुविधा दे रही है। आजकल हम अपने मित्रों, प्रियजनों से असीमित मात्रा में बात कर सकते हैं। पहले ये संभव नहीं था क्योंकि फोन सेवाएं बहुत अधिक महंगी थी। अब हम वीडियो फ्री में अपने फोन या कंप्यूटर में देख सकते हैं। अब हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग करके बात कर सकते हैं। घर का काम हुआ आसान। अवन, मिक्सर, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, इंडक्शन चूल्हा जैसे उपकरणों ने रसोई का काम सरल बना दिया है। आज की गृहिणी यानी होम मेकर्स वॉशिंग मशीन से कपड़े धोती है, इस तरह उसकी मेहनत बचती है। घर में रोशनी। अब एलईडी तकनीक वाले बल्ब बाजार में आ गए हैं जो बहुत कम बिजली लेकर अधिक रोशनी देती है। इस तरह बिजली की बचत होती है और देश के गांव-गांव में बिजली जा

सही है, लोगों को बिजली के खर्चे में बहुत बचत हुई है। अब देश में अधिकतर महिलाएं गैस पर खाना पकाने लगी है, इससे उनको धुआं नहीं लगता है, उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से गैस के नए भंडार की खोज हुई है। गोबर और कचरे से भी रसोई गैस बनाने की तकनीक बनाई जा रही है। सीएनजी गैस के इस्तेमाल आजकल हर मेट्रो सिटी में बस और अन्य वाहनों में हो रहा है, इससे वायु प्रदूषण कम हुआ है। आजकल डेंगू, मलेरिया, खासकर चिकनगुनिया, कैंसर, ओवेरियन डिजीज, टीबी, एस्मा, इनफर्टिलिटी और कई सारे डिजीजेस हो रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में रोज नए नए शोध और खोज हो रही है, इससे हमें बहुत लाभ हुए हैं। चिकित्सा की नई टेक्नोलॉजी आ जाने से भारत में मृत्यु दर में गिरावट आई है। दैट मीन्स द डेथ रेट हैज गॉन डाउन।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: तो दोस्तों, इसके नुकसान भी हैं। आधुनिक समय में टेक्नोलॉजी के नुकसान ये है कि हिंसा, खून खराबा वाले वीडियो गेम आजकल हर बच्चे खेल रहे हैं। कभी कभी तो लगता है कि टेक्नोलॉजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर इसके नुकसान भी बहुत है। आज छोटे बच्चों को भी इंटरनेट की लत लग गई है। आजकल बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो सारा दिन फोन या कंप्यूटर पर ही चिपके रहते हैं। बच्चे घर के काम और जिम्मेदारी से भी बचने लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर सारा समय नष्ट कर देते हैं। अपने कीमती समय का इस्तेमाल अगर बच्चे पढ़ाई में करें तो उनको बहुत फायदा होगा, उनका भविष्य उज्जवल बनेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चे ज्यादा वक्त चैटिंग और वीडियो देखने में बिताते हैं, इस तरह उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। आजकल हैकर्स हमारे इंटरनेट बैंक अकाउंट के खाते को हैक करके पैसे की चोरी करते हैं। आए दिन ऐसी खबर आती रहती है, कुछ चोर ATM कार्ड बदलकर क्लोन बनाकर हमारे पैसे चुरा लेते हैं। इस तरह टेक्नोलॉजी ने भी हमारी समस्याएं बढ़ा दी है। आज लुटेरे और चोर हमें फर्जी कॉल करके परेशान करते हैं, हमारा बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड, OTP नंबर पूछते हैं। आज के लम्हे प्रोग्राम में हमने आपको टेक्नोलॉजी के अनेक फायदे और नुकसान बताए हैं। हमें इसका इस्तेमाल सोच समझ कर मानव कल्याण के लिए करना चाहिए। वेल, With this message, this is Chetan signing off for today. I'll get back to you in our next program. Till then, bye.
0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व

कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम, अब से कुछ देर बाद यानी 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:00, जिसमें आप सुनेंगे कृषि कार्यक्रम। 5:30 पर बांग्ला में सुनिए महिलाओं के लिए कार्यक्रम चिरोंतनी। संध्या 6:00 किसानवाणी कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रिंसिपल साइंटिस्ट हेड डॉक्टर वाई रामाकृष्णा से बातचीत की जाएगी। शाम 6:30 पर आप सुन पाएंगे मीना आनंद द्वारा लिखित नाटक बदलते प्रतिमान। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम एवं जनसूचनाएं दी जाएंगी 7:15 पर। दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम का समय रहेगा 7:20। 7:30 पर युवाणी में होगा पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार, जिसमें आप सुनेंगे सहायक वन संरक्षण डॉक्टर मोनी दीपा चौधरी से ली गई भेंटवार्ता। विषय रहेगा वन महोत्सव 2026 हरित भविष्य की ओर। फिल्म गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन पाएंगे रात 8:00। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात होगा कार्यक्रम गौरवगान। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्रीवाइड, 9:45 पर इनसाइट्स कार्यक्रम और रात 10:00 क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जबकि रात्रि 10:00 FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात होगा भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। 5:55 पर एग्री टिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन। जलयानों के यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत कराएंगे सवेरे 6:10 पर। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम हवा शीर्षक पर केंद्रित होगा। रामचरितमानस गान की 288वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:30 पर। गांधी चर्चा कार्यक्रम की पहली कड़ी आप सुन पाएंगे 6:40 पर। मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 6:50 पर। सवेरे 7:00 सुनिए जन सूचनाएं। 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी। जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई से प्रसारित होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान में आप सुनेंगे मध्य अंडमान के सहायक आयुक्त श्री दीपांशु बोरा से टेलीफोन पर ली गई भेंटवार्ता। विषय रहेगा रंगत मानसून मैराथन, साथ ही कुछ फिल्मी गीत भी आप सुन पाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकार होंगे कमलिनी मल्होत्रा और राधा सलूजा। फिल्मी गीतों का लुत्फ लीजिए सुबह 9:00 तराने सुहाने कार्यक्रम में। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित सियाराम तिवारी का गायन प्रसारित किया जाएगा। विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर की रिकॉर्डिंग सुनवाई जाएगी सुबह 10:00। दिन के 11:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1320वीं कड़ी। निकोबारी कार्यक्रम में 11:30 पर सुनिए लोकगीत। दोपहर 12:00 तेलुगु में होगा युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम। मलयालम में 12:30 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य कार्यक्रम। महफिल कवाली कार्यक्रम में 1:10 पर कवाल होंगे जफर हुसैन खान बदायूनी और साथी। आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम का समय रहेगा 1:30। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर करंट अफेयर्स कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जबकि रात 10:00 FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:45 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम बहारों की शाम।

कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इंतकाम फिल्म के इस गीत से, जिसे आवाज दी सपना मुखर्जी ने, बोल जलीश शेरवानी के, धुन बनाई आनंद मिलन ने।

हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में तैयार ये गीत था सनम तेरी कसम फिल्म से। आवाजें थी अंकित तिवारी और पलक मुछल की, गीत रचना समीर अंजान की। और अब कार्यक्रम के अंत में पेश है

0: चुप चुप के फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम बहारों की शाम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி வழங்கும் தமிழ் அமுதம். வணக்கம் நேயர்களே.

0: श्रोताओं, अभी आप तमिल कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। अब पेश है बंगला कार्यक्रम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम शुरू होच्छे आजकेर बांग्ला अनुष्ठान। শ্রোতা বন্ধুরা, সফলতা এবং ব্যর্থতা দুজনেই আমাদের জীবনের অংশ, কিন্তু কেউই চিরস্থায়ী নয়, বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রোতা বন্ধুরা, অনুষ্ঠানে আপনাদের জন্য আজ রয়েছে মহিলাদের প্রিয় অনুষ্ঠান চিরন্তনী।

0: श्रोताओं, अभी आप बांग्ला कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। अब किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे, किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, किसान वाणी के आज के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। किसान साथियों, हमेशा की तरह आज के इस अंक की शुरुआत भी हम आज के खूबसूरत विचार से कर रहे हैं। साथियों, हमारा आज का विचार है, ईश्वर कितनी सुंदरता से हमारे जीवन में एक और दिन की वृद्धि करते रहते हैं। केवल इसलिए नहीं कि आपको इसकी ज़रूरत है, बल्कि

0: किसी अन्य को भी प्रतिदिन आपकी ज़रूरत है। इसलिए साथियों, इसी खूबसूरत विचार को लिए हम आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। भाइयों, हमारा आज का प्रश्न है, गर्भवती गायों के दाने में प्रोटीन लगभग कितना होना चाहिए, ये आपको बताना है। साथियों, प्रश्न एक बार फिर सुने, गर्भवती गायों के दाने में प्रोटीन लगभग कितना होना चाहिए, ये आपको बताना है। किसान साथियों, प्रश्न के उत्तर आप सोचते रहें और कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के तहत इस प्रश्न का सही उत्तर हम आपको अवश्य ही बताएंगे।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: उतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: किसान भाइयों, आइए कार्यक्रम में एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं, उसके बाद हम कुछ और जानकारी की बातें आपके साथ साझा करेंगे।

साथियों, गीत संगीत का आनंद तो आपने ले लिया किसान साथियों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य के बारे में। साथियों, खेतीबाड़ी का जब काम होता है तो सबसे पहले हमें अपनी मिट्टी की जांच करानी होती है, यानी कि आपका जो मृदा है यानी जो मिट्टी है, अगर वो स्वस्थ होगी तभी जाकर

0: करके आपके बागान या आपके पेड़ पौधे आपको अच्छे फल दे पाएंगे। साथियों, मृदा की जांच समय समय पर करवाना पड़ता है, ये आपको मालूम ही होगा। और विस्तार पूर्वक मृदा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है कृषि विज्ञान केंद्र के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर वाई रामाकृष्णन जी। आइए सुनते हैं इनके साथ की गई ये बातचीत।
1: सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: नमस्ते, स्वागत है।
1: तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में जैविक खाद क्या भूमिका निभाती है?
2: जैविक खाद उसे कहते हैं जो हमने जो प्रकृति से लिया गया है। तो इसमें क्या है कि जो चीज प्रकृति में है उसी को हम इस्तेमाल करते हैं। जैविक खाद का मुख्य सोर्स है जो फार्म यार्ड मैन्योर, जो खेत में जो कचरा है, जो भी हमें जो है जिसे हमें उसे हम कंपोस्ट करते हैं, उसे वो होता है। दूसरा है वर्मी कंपोस्ट बनाना
1: जी।
2: और जो एडिशनल अगर खाद अगर हम जो बाहर से लाना है तो उसे अजोस्पाइरिलम, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसे हम अपने जो न्यूट्रिएंट बढ़ा सकते हैं, और दूसरे जो भी अभी जैसे कली है, नीम कली है और दूसरी कली जो हम अपने प्रयोग कर सकते हैं जो न्यूट्रिएंट सोर्स के लिए है जैविक खाद के। और अभी नेचुरल फार्मिंग के तहत हमें इसमें जीव अमृत, घना जीव अमृत, इसका भी उपयोग कर सकते हैं।
1: जैव उर्वरक क्या है और वे किसानों को कैसे लाभ पहुँचाते हैं?
2: जैव उर्वरक वो है जिस जो जो ऑर्गेनिक सोर्स है, जिस से भी आया हो, लिविंग थिंग से आया है, ना कि आर्टिफिशियल सिंथेटिक से आया है। जैसा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं और जो केमिकल होते हैं, जो केमिकल नेचुरल पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट से आया है, जो कि जैविक खाद जो है जो जो नेचुरल से आया, जैसे प्लांट बेस है या एनिमल बेस है लिया गया तो जैविक खाद उसे कहते हैं।
1: डॉक्टर साहब, क्या जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों को पूरी तरह से बदल सकते हैं?
2: जैव और जो है इसके जो विवाद है ये अलग है। जैव खाद का अपना महत्वपूर्ण है और रासायनिक उर्वरक उसकी अपनी महत्वपूर्ण है। जैव खाद जो अगर यूज करेंगे, क्योंकि जैव खाद में जो कॉन्सेंट्रेशन मिनरल्स होती है वो बहुत कम होती है और इसी वजह से इसको उसका जो जिसका अगर लागत हमें लाने के लिए हमें ज़्यादा उपयोग कर लाना पड़ता है। जैसा कि अगर एक केजी नाइट्रोजन के लिए हमें आके करीब करीब 200 केजी हमको फार्मयार्ड मैन्योर देना होगा और वार्मिंग कंपोस्ट है तो हमें एक क्या 50 केजी डालना होगा। तो ऐसे करके हमें इसको क्वांटिटी वाइज, लेकिन यही अगर 1 केजी नाइट्रोजन के लिए हमें 2 केजी यूरिया देने से हो जाता है। और जब हम जैव खाद को देखेंगे तो इसका जो बैलेंस एक साथ नहीं होता, कॉम्प्लेक्स में मिलता है, इसलिए उसका जो एक पूरा नहीं मिला। लेकिन रासायनिक खाद है सिंगल न्यूट्रिएंट और दो यूनिट का साथ होता है तो वो पूरे कॉन्सेंट्रेट फुल वाटर सॉल्युबल में होता है। तो रासायनिक खाद का
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हरी खाद के क्या फायदे हैं?
2: हरी खाद अभी जैसे मानते हैं जो खेत में हम फसल उगाने से पहले उसे बुआई करते हैं, इसे हम तब तक उगने देते हैं जो आके जब तक उसके फूल ना आ जाए और उसके बाद उसे जोत देते हैं। जब उस जोतने के बाद क्या हो जाता है, इससे क्या होगा, हमारा सॉइल का जो ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स है वो बढ़ता है, प्लस नाइट्रोजन सोर्स भी बढ़ता है। हम जो ग्रीन मैन्योर में जो उपयोग जो करते हैं मोस्टली डेंचा सनएम, इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। क्यों ये करते हैं कि ये जल्दी उगता है और जल्दी उसमें कवर कर लेता है, इस वजह से हम इसे डेंचा का ज़्यादा उपयोग करते हैं घारी खाद में।
1: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोषक तत्व प्रबंधन की विशेष चुनौतियाँ क्या है?
2: अंडमान में पोषक तत्व की चुनौतियाँ कई हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे समय पे हमें कोई खाद सोर्स नहीं मिलता है
1: जी।
2: और हमें पहली तत्व ये हमें मिसबैलेंस है कि हमारा जो सॉइल का कंडीशन स्लोली जो डिटोरेट हो रहा है
1: जी।
2: तो अंडमान देखिए एक द्वीप समूह है जहाँ पर हमें एक बारिश की ज़्यादा मात्रा आती है
1: जी।
2: सॉइल जो है टेराइन जो है ऊपर खा पर जो उसकी टेराइन स्लोप लैंडिज कंडीशन है
1: जी।
2: इस वजह से हमारा जो इसका इसमें क्रॉप अच्छी आती है लेकिन इसमें कई चैलेंजेस है। एक जैसे मैंने कहा बारिश ज़्यादा है तो जो जितना भी मिनरल सॉइल में होती है वो डिजॉल्व होके लीचिंग हो जाता है, या तो रूट जोन से नीचे चले जाता है या डिजॉल्व होके बारिश के साथ बह जाता है
1: जी।
2: तो ये कारण से इससे क्या हो जाता है, एक लॉस हो जाता है। दूसरा है हमारा सॉइल जो है आप ज़्यादातर एसिड सॉइल है
1: जी।
2: तो इससे क्या हो जाता है कि जब सॉइल में जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है तो उसका अगर प्रबंधन ना किया जाए तो एसिडिटी बनी रहती है, तो इससे भी कई न्यूट्रिशन जो है प्लांट ले नहीं पाते, तो इससे भी हमारा जो है पैदावार कम हो जाती है। और हमारा जो जैसे आप देखेंगे आजकल जैसे खेती करते हैं ऊपर घास

0: निकल जाता है, इससे होता है कार्बन का कंटेंट कम हो गया है खेत
1: अच्छा
0: में। जैसे जैसे
1: जी
0: हम
1: जी
0: जुताई भी करते हैं,
1: जी
0: जैसे
1: जी
0: जो हल चलाते भी
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो उससे
1: जी
0: क्या होगा कि हमारा जो कार्बन कम हो जाता है, इससे कार्बन जब कम हो जाता है तो हमारा जो सॉइल का माइक्रोबियल कंटेंट भी कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि सॉइल का जो माइक्रोबियल उसका जो प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, क्योंकि आप जैसे माइक्रोबियल का मेन कारण है कि ये जो इमोबाइल मिनरल्स होता है उसे डिजोल्व करके प्लांट के जो प्लांट को उपलब्ध कराते हैं, तो इससे हमारा जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है वो भी कम हो जाता है। और दूसरी, जैसे बारिश ज़्यादा है, ऊपर का जो मट्टी है वो भी जो है बह के जा रहा है, तो बह के जाने से क्या हो जाता है कि उसके साथ कई पोषण
1: जी
0: समुद्र में ही चले जाते हैं बह के।
1: जी
0: आप
1: जी
0: देखिए जैसे बारिश आ जाने के बाद
1: जी
0: समुद्र
1: सारे
0: किनारे कलर जैसे चेंज हो जाता है, पीले
1: जी
0: हो जाती है, वो मोस्टली ये सॉइल इरोशन की वजह से, और उसके कारण कई सॉइल जो है डिजोल्व होकर जाता है। इसका कारण हमारा, इसलिए हमारा तो कहते हैं कि हमारा जो इको सिस्टम ही ऐसा है कि पास में ही समुद्र है तो सारा बह के चले जाता है,
1: जी जी
0: तो ये एक दिक्कत है। तो इसलिए हमारा इम्बैलेंस यूज़ हम कर नहीं पाते हैं। अदर है कि जैसा भी हमारा, हम जैसे किसान भी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग बहुत कम यूज़ करते हैं। प्लांट को खाली नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास ही नहीं चाहिए, कहीं उसे अलग सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे

0: हो के जाता है। इसका कारण हमारा, इसलिए हमारा कहते हैं कि हमारा जो इको सिस्टम ही ऐसा है कि पास में ही समुद्र है तो सारा बह के चले जाता है,
1: जी,
0: तो ये एक दिक्कत है। तो इसलिए हमारा इम्बैलेंस यूज़ हम कर नहीं पाते हैं। अदर है कि जैसा भी हमारा, हम जैसे किसान भी है, माइक्रो न्यूट्रेंट का उपयोग बहुत कम यूज़ करते हैं। प्लांट को खाली नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास ही नहीं चाहिए, कहीं उसे अलग सूक्ष्म माइक्रो न्यूट्रेंट्स चाहिए, जैसा जिंक है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, तो ऐसे अन्य मिनरल्स है जो उसका भी उनको चाहिए, तो ये हमारे यूज़ नहीं करते हैं। सॉइल का जो है, हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सख्त हो जाता है
1: जी
0: इससे हो जाने के कारण, और जबकि मैंने जैसा कहा कार्बन नहीं है तो डिग्रेडेड होता है, तो और सख्त मतलब माइक्रोबियल कंटेंट नहीं होता है।
1: जी
0: तो ये सब कई चुनौतियां हैं जिसे हम अपने जो बैलेंस यूज ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं कर पाते ठीक से।
1: जी तो डॉक्टर साहब, भारी वर्षा उर्वरक दक्षता को कैसे प्रभावित करती है?
0: अभी मैं जैसे कह रहा था कि हमारे यहाँ जैसे 7 महीने में बारिश आती है, कल
1: जी
0: लगभग 3,200 3,400 mm की रेनफॉल होती है पे,
1: जी
0: तो क्या हो जाता है इस दौरान, क्या होता है कि कई मिनरल्स जो भी हमें, जो भी मिनरल्स प्लेंट को लेना होता है
1: जी
0: वो वाटर सॉल्युबल में, नहीं वाटर में घुला होना चाहिए, वो तभी ले पाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि जब उसमें धीरे धीरे प्रकृति में घुलता है तो
1: जी
0: बारिश के अतिरिक्त ऊपर होने के कारण पानी के साथ घुल के वो भी बह के समुद्र में चले जाते हैं।
1: जी
0: ये इससे, इसका वजह से हमारा एक चैलेंज भी है कि इसमें हमें कैसे यहाँ पर फसल उगाए जाए।
1: भारी वर्षा से फसल में भी काफी नुकसान आते हैं।
0: हाँ वो एक वो तो फिजिकल डैमेज एक होता है,
1: जी जी
0: जिससे बारिश, हवा और जो बारिश की जो मार है,
1: जी
0: जो प्रेशर आती है, स्प्लैश इरोशन से भी होता है और दूसरे गली इरोशन से भी उससे जो निकलता है वो भी एक
1: जी
0: मार होती है।
1: डॉक्टर साहब, मानसून के मौसम में किसानों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
0: किसानों को सावधानी, जैसे आप कौन सा फसल लेंगे पहले वो
1: जी
0: देखना चाहिए,
1: जी
0: और उसके अनुसार हमें चयन करने के बाद अपने सॉइल को ये देखना है कि हमारा मिट्टी में कैसी है,
1: जी
0: सॉइल टेस्टिंग जो देख लेनी
1: जी
0: चाहिए
1: जी
0: उसमें कितना, अगर हम देखेंगे कि उसमें कोई पोषण तत्व तो कम है तो उसको हम भरपाई करने देखेंगे,
1: जी
0: और जो अगर कोई पोषक तत्व तो है उसमें जहाँ पे जरूरत नहीं है उस न्यूट्रिएंट को हम अवॉइड करेंगे, तब से हमारा पैसा भी बचेगा और हमारा
1: जी
0: रिसोर्स भी बचेगा,
1: जी
0: तो ये सब सावधानी कर सकते हैं।
1: जी जी और अभी जो मानसून, जैसे अभी वर्षा इतनी हो रही है, किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, अभी ठीक प्रकार से खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि मानसून के मौसम में ही किसानों को काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ती है, तो
0: जैसे मैं कह रहा था कि देखिए हमारा बारिश बहुत ज़्यादा आता
1: जी
0: है, बहुत ही मतलब इंटेंसिव आता है जब आता है,
1: जी
0: तो उससे भी क्या है कि ऊपर का मट्टी जो है बह जाता है, जो
1: जी
0: मट्टी है हमारा जो एक नेचुरल सोर्स है जो बहुत कीमती है,
1: जी
0: अगर एक बार मट्टी बह के चले गई
1: जी
0: तो वापस वो नहीं आएगी,
1: नहीं
0: क्योंकि
1: आएगी
0: 1 इंच मट्टी बनने के लिए 400 साल लगती है।
1: जी
0: केवल जो नरम है उसी को मट्टी कहते हैं एग्रीकल्चर में,
1: जी
0: ना कि उससे जो नीचे वाला है जहाँ पर जड़ ठीक से ग्रो ना हो उसे हम मट्टी में नहीं, हिसाब में नहीं लेते हैं।
1: जी
0: तो हमें सॉइल का, हमें कंजर्वेशन प्रैक्टिस लेना चाहिए, कई तरह का प्रैक्टिस है जहाँ इसे स्लोप के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से, और जिस प्लांटेशन या प्लांटेशन क्रॉप है या एनुअल क्रॉप जहाँ पे हम जुताई करते हैं उसके हिसाब से ये चेंज होता रहता है सॉइल
1: जी
0: वाटर कंजर्वेशन का।
1: जी डॉक्टर साहब, इनपुट डीलरों और हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित करने का क्या उद्देश्य है?
0: हाँ ये जो अभी किसान बचाओ अभियान चल रहा है,
1: जी
0: देखिए इसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कई सारे लोग हैं जिसे हम इसे इनसे जिसे हम किसानों तक पहुंचना चाहते हैं।
1: जी
0: इनपुट डीलर्स वो है जो किसान उनके पास डायरेक्टली आते हैं और उनसे प्रोडक्ट्स लेते हैं और उनसे सलाह भी लेते हैं कि कैसे यूज़ करें क्या है।
1: जी
0: तो पूरे भारतवर्ष में देखेंगे तो इनपुट डीलर एक जरिया होता है, जो इवन हमारे एक्सटेंशन ऑफिसर से ज़्यादा उन इनपुट डीलर पर जाते हैं और वो उनसे ही सलाह लेते हैं कि किस, अगर ये जो किसान जो खेती बचाओ योजना में हमें बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करना है तो हमें उर्वरक को कैसे कम करा जाए, अन्य कीटनाशक को कैसे कम किया जाए इनपुट्स को, तो वो इनपुट लेने तो वहीं पर जाते हैं, तो उन्हें वो बताएंगे कैसे यूज़ करना,
1: जी
0: किसी चीज़ को कैसे डालना,
1: जी कितनी
0: कैसे उस
1: मात्रा में,
0: कितनी मात्रा,
1: जी
0: किस समय में डालना
1: जी
0: और कितने डालना, तो ये उनको जब बताएंगे उनको जब खरीदते वक्त, तो इससे वो किसानों को एक रिविजन होगा, तो
1: जी
0: इससे हमें क्या है कई चीज बच जाता है, नहीं तो किसान क्या है अपने आप से एक सोच के एक
1: सोच
0: लगा
1: के
0: देगा,
1: हिसाब
0: किसानों को
1: जी
0: नुकसान है, एक रिसोर्स का भी नुकसान हो
1: जी
0: जाता है।
1: जी जी
0: फसल लेने जाएगा जैसे मान लीजिए भिंडी करने जाना है, तो
1: जी
0: उससे पहले बोलेंगे ठीक है ग्रीन मेन्यूर ऐसा हरी खाद लगाइए,

0: कौन से कीटनाशक लाना है,
1: जी
0: ऑर्गेनिक वे में कैसे मैनेज करते हैं,
1: जी
0: जरूरी नहीं कि हर टाइम कीटनाशक, उस कीट को या उस इनपुट को या उस न्यूट्रिएंट को कैसे हम अपने लेवल में कर सकें। यही उद्देश्य है कि ऑर्गेनिक जो इनपुट डीलर्स है इनके साथ भी एक एक बैठक करके उनको भी बताए, उनको भी एक लिया जाए कि आप भी ऐसे प्रचार करिए ताकि ये प्रोग्राम जो है सफल हो।
1: जी बिल्कुल। किसान उत्पादक संगठन और पंचायती राज संस्थाएं इस अभियान को कैसे सपोर्ट कर सकती है?
0: हुआ था हमारे कैरी में कि
1: जी
0: जो और जो इससे पहले जो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन साथ SHG के साथ में हुआ है,
1: जी
0: तो देखिए फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रुप है वो पूरे किसानों का संगठन, कुछ किसानों का संगठन, कुछ अच्छे अच्छे FAO है जो अंडमान निकोबार में, साउथ अंडमान और नॉर्थ अंडमान में, तो उनका जो ग्रुप्स है वो बताएंगे उस ग्रुप को
1: जी
0: अपने एक जो बेनिफिशरी है वो कैसे इस्तेमाल करें,
1: जी
0: कितने मात्रा में यूज़ करें,
1: जी
0: तो ये उनको बताएंगे तो वो अपने बेनिफिशरी को बताएंगे, वो इसी वजह से ये जो एक स्टेप डाउन है इफेक्ट होगा ताकि हम
1: जी
0: वो भी जान जाएंगे कि ऐसे इस्तेमाल करें।
1: डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि SHG ग्रुप्स का, तो इसमें SHG ग्रुप्स कैसे शामिल हो सकती हैं?
0: SHG ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है एक जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं,
1: जी
0: ये भी अपने जो ग्रुप मेंबर्स को बता सकते हैं कैसे हम आके ऑर्गेनिकली यूज करें प्रोडक्ट्स को। तो इससे क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर रिलेटेड फार्मर्स है, जब फार्मर्स वुमेन है प्रोसेसिंग में, तो उन लोग इस प्रोडक्ट को कम उर्वरक और उसके उपयोग के लिए कैसे इस्तेमाल करें वो बताएंगे, उनको अपने मेंबर्स को बता के उसे
1: जी
0: प्रचार में
1: जी
0: जाएंगे।
1: जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आए और मृदा स्वास्थ्य के संदर्भ में आपने किसानों को बताया, अपना कीमती वक्त देने के लिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: मृदा स्वास्थ्य के बारे में अभी आपने विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की। बता रहे थे कृषि विज्ञान केंद्र के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर वाई रामाकृष्णा। साथियों, उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब ने जो जो बातें आपको बताई आप उनसे सहमत होंगे और उन्हीं के कहे अनुसार अपने जो मिट्टी है उसकी जांच करेंगे और मिट्टी अगर स्वस्थ होगी तो आप उससे अधिक लाभान्वित हो सकते हैं।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: किसान भाइयों, अब आइए जानकारी ले लेते हैं पावर टिलर की उपयोगिता के बारे में।
2: किसान भाइयों, हमारे द्वीपों में भी पिछले कुछ वर्षों से पावर टिलर काफी प्रचलित हुआ है और आप इसकी उपयोगिता के बारे में समझने लगे हैं। पावर टिलर सचमुच में किसान का एक बहुत बड़ा दोस्त होता है। इसके कई कारण हैं। पहली बात तो यह है कि सामान्य व्यक्ति द्वारा सामान्य ज्ञान प्राप्त करके पावर टिलर को चलाया जा सकता है, अर्थात इसमें किसी विशेष गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा ये कि पावर टिलर आकार एवं शक्ति में छोटा होने के कारण अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करता है और इस प्रकार ऊर्जा का नुकसान बहुत कम होता है। तीसरी बात ये कि पावर टिलर चूंकि छोटा होता है और कम शक्ति का होता है, इस कारण ट्रैक्टर की अपेक्षा ये सस्ता भी पड़ता है। आकार में छोटा होने के कारण इसे छोटे आकार के खेतों में बिना किसी कठिनाई के आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। पहाड़ी एवं ढालू जमीन में बनाए गए सीढ़ीनुमा खेतों पर भी पावर टिलर का इस्तेमाल आसानी से हो सकता है, जबकि इन जगहों पर ट्रैक्टर का इस्तेमाल लगभग नहीं हो सकता। अब जब हम अपने द्वीपों की बात करते हैं तो यहाँ पर पावर टिलर की उपयोगिता और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ढालू जमीन में खेत छोटे छोटे आकारों के हैं। छोटे छोटे आकार के खेत होने के कारण इनमें ट्रैक्टर का उपयोग कुशलतापूर्वक हम नहीं कर पाते और इसमें कई प्रकार की कठिनाइयों का भी हमें सामना करना पड़ता है। यहाँ ये भी सच है कि अधिक वर्षा के कारण मिट्टी भारी हो जाने से कमज़ोर पशु भी इनमें ठीक से काम नहीं कर पाते। ऐसे में पावर टिलर यहाँ पे खेती के काम में आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है।

0: पावर टिलर 6.5 से 12 अश्व शक्ति का दो पहियों वाला डीजल से चलने वाला इंजन यंत्र है, जिसमें हल, हैरो, कल्टीवेटर, ट्रॉली आदि लगाकर विभिन्न कृषि कार्य किए जा सकते हैं। धान की खेती के लिए खेत तैयार करने हेतु पावर टिलर बहुत ही उपयोगी है। आपने देखा होगा कि छोटे खेतों में बार बार ट्रैक्टर चलाने से पहियों के वहीं घूमने से गड्ढे पड़ जाते हैं और प्रायः कीचड़ में ये फंस जाते हैं, किंतु पावर टिलर का भार कम होने तथा रोटरी टिलर को आगे की दिशा में धकेलने की प्रवृत्ति के कारण कीचड़ बनाने वाले खेत में इसके फंसने की संभावना कम होती है। एक हेक्टेयर खेत में रोटावेटर, कल्टीवेटर आदि चलाने में लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं, जबकि सूखी जुताई में 11 से 15 घंटे का समय लगता है। पावर टिलर द्वारा विभिन्न दवाओं का छिड़काव एक अन्य विशेष यंत्र की सहायता से 500 लीटर प्रति घंटे की दर से किया जा सकता है। इस तरह सामान्यतः 1 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि का छिड़काव हो सकता है। फसल की कटाई, मड़ाई एवं ओसाई भी हम पावर टिलर की सहायता से कर सकते हैं। चारे की मशीन चलाना, पंप से पानी खींचना, इन कामों को भी हम पावर टिलर की मदद से कर सकते हैं। पावर टिलर में ट्रॉली लगाकर 10 क्विंटल तक सामान हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों, हम देख सकते हैं कि पावर टिलर खेतीबाड़ी में काफ़ी मददगार सिद्ध हो सकता है। किसान भाइयों, जब हम खेतीबाड़ी में आर्थिकी की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ट्रैक्टर जहाँ खरीदने में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, वहीं ट्रैक्टर की मरम्मत और देखभाल में भी ज़्यादा खर्च होता है, जबकि पावर टिलर इसकी तुलना में कम खर्च पर हमें मिल जाता है और इसकी देखभाल में खर्च भी कम होता है। अतः हम आपसे कहेंगे कि हमारे इन द्वीपों की परिस्थितियों में पावर टिलर का उपयोग आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
1: भाइयों, अभी आपने पावर टिलर की उपयोगिता के बारे में ये जानकारी हासिल की। साथियों, अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। हमने आपसे पूछा था गर्भवती गायों के दाने में प्रोटीन लगभग कितना होना चाहिए। उम्मीद करते हैं किसान साथियों ने इस प्रश्न के उत्तर सोच लिए होंगे। साथियों, अपने उत्तर की जाँच कर ले। इस प्रश्न का सही उत्तर है गर्भवती गायों के दाने में 16 से 18% तक प्रोटीन होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपने अपने उत्तर की जाँच कर ली होगी। साथियों, इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। चलिए चलते चलते एक प्यारा सा गीत और सुन लेते हैं।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
1: श्रोताओं, अभी आप किसानवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है मीना आनंद द्वारा लिखित नाटक बदलते प्रतिमान।

0: कौन है?
1: इतनी सुबह कौन आ गया?
2: खोलो माँ।
0: अरे बेटी रूपा, तू आ गई? कैसी हुई शादी तेरी सहेली नीता की?
1: ठीक हो गई माँ।
0: क्या बात है, तू सुस्त क्यों है? अरे अरे तू तो रोने लगी।
1: कुछ नहीं माँ, ऐसे ही।
0: अरे अपनी सहेली को याद करके रो रही है क्या पगली? लड़कियां तो पराधन होती ही है। तू भी जाएगी किसी के घर?
1: माँ प्लीज तंग ना करो, बहुत थकान लग रही है, सोना चाहती हूँ थोड़ा।
0: अच्छा बेटी, आज ऑफिस नहीं जाएगी?
1: हाँ जाऊँ।

0: मुझे 9 बजे जगा देना माँ।
1: अरे कौन आया है रूपा की माँ?
0: रूपा आई है, पर पता नहीं क्यों बड़ी उखड़ी सी लग रही है।
1: अरे थकान होगी और फिर शादी में जागी भी तो होगी, थोड़ी देर सो लेगी तो ठीक हो जाएगी। हाँ मुझे जरा पेपर तो देना, दीपा और आशु को उठा देना।
0: हाँ, सब मैं ही करूं, इतना सा काम भी आप नहीं कर सकते कि बच्चों को उठा ही दें? माँ मैंने जगा दिया है दीपा और आशु को। अरे तू क्यों उठ गई? अभी तो सोई ही थी, नींद नहीं आ रही थी, सोचा तैयार होकर ऑफिस ही चली जाऊं। कल ऑफिस में बड़े साहब भी तो आ रहे हैं, मुझे पिछले 2 दिन का काम भी पूरा करना है।
2: जरा जल्दी घर आ जाना बेटी, कुछ मेहमान आ रहे हैं, तेरे पिताजी ने बुलाए हैं।
0: माँ अगर वो मुझे देखने आ रहे हैं तो सुन लो, मैं शादी नहीं करूंगी।
2: क्या? क्यों शादी नहीं करेगी? मैं भी तो सुनूं।
0: बस मैंने कह दिया ना मैं शादी नहीं करूंगी, तुम दीपा की शादी कर दो। कौन करेगा मुझसे शादी अब?
2: क्या पागलों वाली बात कर रही है? तुझे क्या हो गया है? मैं देख रही हूँ, जब से तू नीता की शादी से आई है तब से ढंग से बात ही नहीं कर रही है। क्या बात है बेटी, मुझे बता, मैं तेरी माँ ही नहीं सहेली भी हूँ।
0: कुछ नहीं माँ, बस मुझे शादी नहीं करनी।
2: लेकिन जिन लोगों को शाम को बुलाया है उन्हें मैं क्या बताऊँ?
0: कुछ भी कह देना,
2: तेरे पिताजी पूछे तो
0: उन्हें भी कुछ समझा देना।
1: किसे क्या समझा देना, मैं सब सुन रहा हूँ। बेवकूफी की बातें छोड़ो और शाम को जल्दी आ जाना रूपा, समझी?
0: अच्छा माँ मैं जा रही हूँ, कोशिश करूंगी जल्दी आने की।

0: अरे रूपा, आज तू भी जल्दी आ गई?
1: हाँ शीला, पिछला कुछ काम बाकी था।
0: ए, तू सुस्त क्यों है? और हाँ, तू शादी में क्यों नहीं आई? नीता तो तेरा इंतजार करते करते ससुराल चले गई। तू ऑफिस भी नहीं आई थी, आखिर रही कहाँ?
1: कहीं नहीं, बस थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए नहीं आ सकी।
0: सच बताना, क्या बात है? तेरी आंखें बता रही है कि तू काफी रो कर आ रही है। अपनी सहेली को नहीं बताएगी क्या?
1: मैं बता नहीं सकती कि मैं कैसे दलदल में फंस गई हूँ शीला, चाह कर भी नहीं निकल सकती।
0: रूपा पहले न बुझा, सच सच बताना क्या बात है।
1: ये एक लंबी कहानी है, अभी नहीं शाम को बताऊंगी, मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा।
0: अच्छा अच्छा, तू आराम कर, तेरा काम भी मैं कर दूंगी।
2: उफ, आज तो बहुत थकान हो गई, सुबह से एक मिनट भी आराम नहीं मिला।
3: हाँ यार, नए बॉस पर इम्प्रेशन भी जमाना है।
4: देख उधर देख, रूपा अभी तक काम में जुटी है।
2: बड़ी अजीब लड़की है यार, किसी को लिफ्ट ही नहीं देती। यार इतनी सुंदर भी तो नहीं है कि उसे अपनी सुंदरता पर घमंड हो।
3: अरे छोड़ यार, हमें क्या लेना देना।
0: चलो रूपा, चलो 5 बज गए, चल किसी रेस्तरा में बैठे।
1: बस अभी चलती हूँ।

0: तमे जो जाना है।
1: हाँ अब बता क्या बात है। देख मुझसे कुछ भी मत छुपाना, मैं तेरी बचपन की सखी हूँ ना, और फिर मैं भी तो अपनी सारी बातें तुम्हें बताती हूँ। शीला कल का दिन मेरे जीवन का सबसे भयानक दिन था। नीता की शादी में जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी, अचानक मुझे रमेश दिखाई पड़ गया, फिर बोला चाय पियेंगे। मैंने बहुत कहा कि मुझे देर हो जाएगी, पर वो नहीं माना और ज़बरदस्ती होटल में ले गया चाय पिलाने के लिए। उसके बाद बोला चलो मोटरसाइकिल पर छोड़ दो। मुझे कोई भी शक नहीं हुआ, पर वो कमीना मुझे एक मकान में ले गया, बोला वहाँ एक दोस्त से एक मिनट का काम है। एक कमरे में मुझे छोड़कर बाहर निकला और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया।

0: मैं घबरा गई तो बोला अभी आता हूँ। और रात भर मैं उस कमरे में बंद रही। पता लगा ये उन लोगों का पेशा है, लड़कियों को ब्लैकमेल करना, उन्हें बेच देना। बड़ी मुश्किल से सुबह भाग पाई वहां से। ये बात छुप तो पाएगी नहीं। मैं क्या कहूंगी माँ से, पिताजी से, नीता से। कभी सोचती हूँ रमेश को गोली मार दूँ, कभी सोचती हूँ कि मैं ही आत्महत्या कर लूँ।
1: ना ना, ऐसा गलत काम कभी मत करना। ये रमेश कौन, वो अपना क्लास फेलो तो नहीं?
0: हाँ शीला, वही। पिछले कई दिनों से किसी न किसी बहाने टकरा जाता था। फिर दुनिया भर की बात, कॉलेज की, आजकल की।
1: इसमें तेरा क्या कसूर? तू जिंदा रहेगी उन गुंडों से बदला लेने के लिए। अगर तू मर गई तो इन गुंडों की जीत होगी, तुझे बदला लेना है। अच्छा ये बता, वहाँ और कौन था उनके साथ में?
0: वहाँ तीन और आदमी थे, मुझे उन तीनों के चेहरे भी याद हैं। अगर वो सामने आ जाए तो शायद पहचान भी लूँ।
1: तो चल, अभी चल कर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं।
0: लेकिन ऐसा करने से तो सबको पता चल जाएगा। नहीं, पुलिस में नहीं।
1: देख, लड़कियों की इसी कमजोरी से गुंडों की हिम्मत बढ़ती है। हम पुलिस इंस्पेक्टर से कह देंगे कि वो हमारे घर ना आए, हम स्वयं ही उनसे मिलते रहेंगे, ठीक है?
0: अच्छा, जैसा तू ठीक समझे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस माँ पिताजी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो दीपा की शादी होने भी मुश्किल हो जाएगी। मैं तो बदनाम हो ही जाऊंगी। वो कमबख्त रमेश मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। रहने दे शीला पुलिस पुलिस का लफड़ा। मैं शायद उस रात को किसी बुरे सपने की तरह भूल जाऊं।
1: नहीं रूपा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर ऐसे बदमाशों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। चल उठ।
0: शीला, बहुत डर सा लग रहा है।
1: अरे डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ के इंस्पेक्टर अपने राजेश भैया के दोस्त ही तो है, घर में भी कई बार आ चुके हैं। भाई साहब नमस्ते।
2: नमस्ते
1: भैया, ये मेरी सहेली है रूपा, इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। लेकिन ये बात आप किसी को बताना नहीं, राजेश भैया को भी नहीं। ये वायदा करने पर ही मैं आपको कुछ बताऊंगी।
2: अच्छा, क्या बात है मिस रूपा?
1: रूपा अपना बयान दे दे।
0: इंस्पेक्टर साहब, मेरे माँ पिताजी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए।
2: अच्छा।
0: कल रात कुछ गुंडे उठा ले गए थे मुझे, मैं आज ही वहाँ से भाग कर आई हूँ। उनके चेहरे भी मुझे अच्छी तरह याद हैं।
2: गुंडे ले गए थे? लेकिन कहाँ? वो जगह पहचान सकती हो?
0: हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे वो घर अच्छी तरह याद है। वो पेच एरिया का छोटा सा घर था, उसमें चार लोग थे। रात भर मुझे धोखे से एक कमरे में बंद कर दिया। सुबह बड़ी मुश्किल से छत पर पहुंच गई, छत से छज्जे पर और छज्जे से सड़क पर कूद कर आई हूँ।
2: मगर आप वहाँ पहुँची कैसे? मेरा मतलब है कि गुंडे आपको कैसे ले गए?
0: वो मेरे कॉलेज का साथी है रमेश, इस जान पहचान का उसने फ़ायदा उठाया और मुझे धोखे से उस मकान में ले गया। यहाँ क्यों रोक दी मोटरसाइकिल?
3: बस एक मिनट, एक दोस्त को एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना है। आप भी आ जाइए ना ऊपर, अभी चलते हैं, यहाँ अकेली गली में।
0: नहीं नहीं ठीक है, जल्दी से आ जाइएगा।
3: बस मुझे 2 मिनट लगेंगे, फिर भी गली में आप अकेली, मेरा मतलब सन्नाटा। वैसे डरने की कोई बात नहीं, आ जाइए।
0: ठीक है, मगर जल्दी कीजिएगा।
3: बस 1-2 मिनट में। ओह, कमरा खाली, बैठिए बैठिए, देखता हूँ दूसरे कमरे में हो शायद।
0: ये क्या, दरवाजा बंद करके क्यों जा रहे हो रमेश? रमेश, रमेश दरवाजा खोलो।
3: थोड़ा रुको बेबी, सब पता चल जाता है।

0: मैंने ना जाने क्या सोचकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया।
1: ऐसे
0: काफ़ी रात में आए वो लोग। खिड़की से झांक कर मैंने देखा रमेश के साथ तीन और लोग थे, भयानक से शराब के नशे में चूर। उनकी बातों से मुझे लगा कि मुझे कहीं और ले जाने के लिए गाड़ी लेकर आए हैं वो।
1: ऐसे
0: काफ़ी कोशिश करते रहे दरवाज़ा खोलने की, पर मेरे भाग्य से वो खुला नहीं। सुबह 4 बजे के करीब वो फिर बाहर से बंद करके धक्के देते हुए चले गए। मैंने कमरे के पीछे की खिड़की खोली, वहाँ से साथ वाले मकान की छत लगी थी, खिड़की के ऊपर रोशनदान था। थोड़ी कोशिश से मैं रोशनदान से छत पर उतर गई, वहाँ से एक छज्जे पर कूदी और छज्जे से सड़क पर। छुटपुटा हो रहा था, मगर मेरा भाग्य कि किसी ने देखा नहीं और मैं घर गई।
1: शाबाश, बड़ी बहादुर हैं आप। लेकिन जब आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं तो आप रिपोर्ट लिखवाने क्यों चली आईं? मेरा मतलब है कि आप चुपचाप घर भी तो जा सकती थीं।
0: मैंने भी यही सोचा था पहले, पर एक तो इससे उन बदमाशों का हौसला बढ़ेगा और दूसरे फिर रमेश मुझे जीने नहीं देगा। फिर शीला ने भी हिम्मत बढ़ाई।
1: वाकई ये हिम्मत अगर लड़कियों में आ जाए तो किसी की मजाल नहीं कि। अच्छा मिस रूपा, एक सवाल और। जब वो बदमाश पकड़े जाएंगे तो आपको गवाही के लिए बुलाया जाएगा, तब अखबारों में भी छपेगा, आपकी थोड़ी बहुत बदनामी भी हो सकती है।
2: वाह भैया, अभी तो आप हिम्मत बढ़ा रहे थे और आप डराने लगे। देखो, ये कोई कोर्ट कचहरी नहीं जाएगी। सबूत जुटाना तुम्हारा काम, मकान पर छापा मारो, शायद कोई सबूत मिले।
1: शीला, छापा मारने से अब वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सुबह भागी है और उन्होंने सारे सबूत अब तक हटा दिए होंगे। लेकिन हाँ, मकान कहाँ ले जाएंगे? उस मकान मालिक से शायद कुछ पता चले। आइए, चलिए मेरे साथ।
0: सुनिए, आज नहीं, कल चलें। शाम के समय आज मुझे घर भी जल्दी पहुंचना है।
1: अच्छा मिस रूपा, ऐसा करिए, आप बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करिए। कल भी नहीं, परसों आपको मेरे साथ उस जगह चलना होगा।
0: जी अच्छा।
2: इंस्पेक्टर भैया, मैं भी साथ चलूंगी। हम लोग ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना? अच्छा, नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: देख, मैं कहती थी ना कि किसी को भी पता नहीं चलेगा।
0: ओफो, 7 बज गए, आज माँ ज़रूर नाराज़ होंगी। मैं तो भूल ही गई थी कि वहाँ लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। शीला, तू मेरे साथ मेरे घर चलना।
2: अच्छा बाबा, चल। आज तेरी वजह से मैं भी अपनी माँ की डांट खा लूँगी।
0: दरवाजा खोलो। तो अब घर की याद आई है रूपा की बच्ची? आज कहा था ना कि जल्दी आ जाना। माँ देखो तो, शीला आई है।
3: शीला, आओ बेटे। शीला आओ। इस लड़की ने तो नाक में दम कर रखा है, अब तू ही इसे समझा बेटी। आज डिनर पर इसे देखने लड़के वाले आ रहे हैं।
2: आंटी, ये ठीक ही कह रही है। अभी अगर कुछ महीने आप शादी ना ही करें तो इनका प्रमोशन हो जाएगा और फिर बहुत अच्छा लड़का भी मिल सकता है। मैंने भी अपनी माँ को शादी के लिए मना कर दिया है।
3: पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। अच्छा, मैं चाय बनाऊँ, तुम लोग बातें करो।
2: नहीं आंटी, चाय फिर किसी दिन पीऊँगी, आज तो वैसे भी देर हो गई है। अच्छा तो रूपा, मैं चलती हूँ, कल मिलेंगे। हाँ, बाय
0: बाय। अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जा, वो लोग आते ही होंगे।
3: सारा खाना बना लिया है। हाँ, तेरे पिताजी शाम से तुझे पूछ रहे थे।
0: माँ, मेरी मानो तो दीपा को दिखा दो। दीपा मुझसे सुंदर भी है और उन लोगों को पसंद भी आ जाएगी। तुम मेरे लिए परेशान ना हो।
3: मैं तुझसे राय नहीं पूछती, तू जल्दी से तैयार हो जा। हाँ, पलंग पर गुलाबी साड़ी रख दी है, वही पहन लेना।
0: अच्छा माँ।
2: देखो जी, कौन आया है।
4: आइए आइए हीरालाल जी, नमस्कार।
5: नमस्कार, ज्यादा इंतजार तो नहीं कराया ना?
4: नहीं, बैठिए। यह है

0: मेरी बेटी रूपा।
1: आओ बेटी, हमारे पास बैठो।
2: नमस्ते।
1: हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ, तुम नौकरी करती हो?
2: जी हाँ।
1: गाने बजाने की शौक है?
2: थोड़ा थोड़ा।
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
2: चलिए, खाना टेबल पर लग गया है, खाना खा ले, फिर बातें होती रहेंगी।
1: आहा, वाकई खाना तो बहुत बढ़िया बना है।
2: हाँ हाँ, रूपा ने ही बनाया है। ऑफिस के साथ साथ घर के कामों में भी रूपा काफी होशियार है।
1: भाई, हमें आपकी लड़की पसंद है,
2: पर क्या हम अपनी हैसियत से अधिक की शादी करेंगे भाई साहब?
1: वो तो ठीक है, पर बात पहले ही साफ हो जाए तो ठीक है। सुरेश कह रहा है कि उसे ऑफिस जाने के लिए मोटरसाइकिल चाहिए।
0: मोटरसाइकिल? देखिए, हम सोचेंगे। वैसे सर, हम मुश्किल है।
1: सोच लीजिएगा। हाँ, और हाँ, फ्रिज और टीवी तो आप दे ही रहे होंगे। अगर आपको ठीक लगे तो आप कल बात करने आ जाइएगा, मुहूर्त निकलवा लेंगे।
2: पिताजी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ।
0: बोलो बेटी।
2: पिताजी, आपको कल जाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे लालची लोगों के घर जाने से मर जाना बेहतर समझती हूँ। मैं किसी बिकाऊ लड़के से शादी नहीं कर सकती। इसे लेकर चौराहे पर बैठ जाइए।
3: अरे रूपा, ये क्या हो गया है तुझे? जा जा, तू अंदर जा बेटी।
2: नहीं माँ, आज की लड़कियाँ गाय बकरी नहीं हैं, जिन्हें जहाँ चाहा वहाँ हाँक दिया। उनकी पढ़ाई में भी उतना ही पैसा लगता है जितना इनकी पढ़ाई में लगा होगा।
1: बस बस, देख ली लड़की साहब, हमें शादी नहीं करनी है अपने बेटे की इससे। बाप रे बाप, लड़की है या आफत। जा रहा हूँ, लड़कियों की कमी नहीं है, समझे?
3: बस हो गई तेरे मन की मुराद पूरी? तू तो यही चाहती थी कि किसी तरह बला टले।
2: माँ, मैं कमाती हूँ, अपना भला बुरा सोच सकती हूँ। और फिर तुम और पिताजी मेरे कारण कर्ज के बोझ से दबो, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। अच्छा, गुड नाइट माँ।

0: नमस्कार रूपा जी।
1: अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ आइए, कैंटीन चलते हैं। एक मिनट, शीला को भी ले लें।
0: लगता है शीला के बिना आप कुछ भी नहीं करती हैं।
1: नहीं नहीं, दरअसल इस मामले में शीला ने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई है।
0: जी हाँ, हिम्मत ज़रूर बढ़ाई है, लेकिन मेरे साथ बातचीत करने में ऐसी बड़ी हुई हिम्मत की कोई ज़रूरत नहीं है।
1: ओके चलिए।
0: अच्छा, जो मकान आपने बताया था उसमें तो तब से ही ताला पड़ा है, पर इतना पता चला है कि मकान किसी श्यामलाल का है। उसकी कई दुकानें हैं, एक दो होटल भी हैं और पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम भी है।
1: पर मकान की चाबी किसके पास रहती है?
0: मकान की चाबी तो मकान मालिक के पास होगी, पर पूछा इसलिए नहीं कि जब तक कोई सबूत ना हो पुलिस किसी नागरिक को परेशान नहीं कर सकती।
1: ओह, तो इसका मतलब है
0: और उस रमेश के बारे में पता चलाया है, वो हजरत भी शहर से गायब हैं। वैसे करते क्या हैं उनके माँ बाप को भी नहीं पता।
1: उनका एक दोस्त है प्रताप, प्रताप जनरल मर्चेंट का मालिक,
0: ये भी
1: उससे।
0: आपने बताया था, उससे कुछ पता नहीं चल पाया। अब तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा श्यामलाल के होटल जहाँ उसका लड़का रहता है वीरेंद्र।
1: मगर इंस्पेक्टर,
0: अगर आप चाहती हैं कि अपराधी जल्दी कानून की गिरफ्त में आ जाए तो आपको सामने आना ही पड़ेगा, वरना फिर छोड़िए ये सारे चक्कर।
1: ठीक है, मैं चलूंगी इंस्पेक्टर।
0: ये हुई ना कोई बात, तो पहले श्यामलाल के घर और फिर होटल। श्यामलाल जी हैं?
2: मालिक नहीं है घर पर, मलकिन है।
0: कोई और?

0: मर्द नहीं है क्या?
1: हाँ साहेब, उनके बेटे हैं। वो कई दिन बाहर रहे, आज ही लौटे हैं, भीतर सोवत हैं।
0: देखो भैया, हम बहुत दूर से आए हैं, बहुत जरूरी काम है, तनिक बुलाई दो।
1: अच्छा, आप लोग तनिक बैठे, हम देखते हैं।
0: रूपा जी, आप चश्मा लगा लें। अगर वो आपका पहचाना हुआ हो तो धीरे से सिर हिला दीजिएगा।
2: कौन साहब है?
0: मैं हूँ, मुझे राजन कहते हैं। सुना है आपका कोई मकान किराए के लिए खाली है, मुझे चाहिए।
2: इसके लिए इतनी दोपहर में आने की क्या जरूरत थी? शाम को आकर पिताजी से बात कर लीजिएगा।
3: इस्तेमाल आप करें, बात पिताजी से।
2: क्या मतलब?
3: मतलब ये कि आप उस मकान के बारे में सब कुछ जानते हैं।
2: क्या मतलब? कौन है आप, क्या चाहते हैं?
0: मैं पुलिस इंस्पेक्टर राजन हूँ, बस थोड़ी सी आपसे सूचनाएं चाहता हूँ। चलिए वीरेंद्र जी, जरा थाने तक चलते हैं।
2: थाने? मगर क्यों, क्या सबूत है आपके पास?
0: ओहो, तो आपको सबूत चाहिए? पहचाना नहीं इन्हें? रमेश कहाँ है?
2: कौन रमेश? मैं किसी रमेश को नहीं जानता। देखिए, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं बदनाम हो जाऊंगा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं सब बता दूंगा।
0: हाँ, ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात, मगर थाने तो चलना ही पड़ेगा।
2: ठीक है, पर
0: मिस रूपा, आपकी हिम्मत से ही ये पूरा गैंग पकड़ा गया। 9 लड़कियां बरामद हुई हैं, जिन्हें बिकने के लिए मजबूर किया जा रहा था।
3: ओह, थैंक गॉड कि मैं यहाँ ऑफिस में हूँ। पर अब क्या?
0: नहीं नहीं, शायद आपकी जरूरत ना पड़े, काफी सबूत मिल गए हैं, एक को भी बचने नहीं दूंगा इसमें से। अच्छा, मैं चलूँ? एक बार फिर धन्यवाद।

0: अरे रूपा, आज तो बड़ी खुश है बेटी। क्या बात है? कुछ नहीं माँ, बस वैसे ही एक बड़ा बोझ हट गया सीने से। बोझ? कैसे बोझ री पगली? नहीं समझेगी माँ, तू नहीं समझेगी।
1: देख तो कौन आया है।
0: अच्छा माँ। अरे शीला, तुम?
2: हाँ मैं, और अकेले नहीं, देख दो और हैं मेरे साथ। ये है मेरे भैया राजेश और उनके दोस्त इंस्पेक्टर राजन।
0: आप आइए आइए।
2: रूपा, पता नहीं तूने अपने घर में कुछ बताया या नहीं, पर अब बात फैल गई है, तू बहुत बदनाम हो गई।
0: शीला, ये क्या कह रही है तू?
3: रूपा जी, शीला ने कुछ नहीं बताया। ये मेरा दोस्त इंस्पेक्टर राजन है ना, इसने बताया है मुझे।
4: रूपा जी, माफ कीजिएगा, मेरे मन में उसी दिन ये बात आ गई थी जब आपने मुझे सारा केस बताया था, और मुझे बहुत खुशी है कि राजेश ने मेरी बात रख ली। इसके लिए
0: आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा। मैं कुछ समझी
2: इसमें
0: नहीं।
2: कुछ समझने की है ही नहीं। मुझे अपने भैया के लिए एक भाभी चाहिए, और राजन भैया ने मुझसे बात की, मैंने कहा ठीक है, और राजेश भैया भी मान गए। अब तो
0: नहीं नहीं नहीं शीला, ये नहीं हो सकता। मैं किसी के एहसान का पात्र नहीं बनना चाहती।
3: इसमें कोई एहसान नहीं है, बल्कि मेरा ही भाग्य होगा यदि मुझे तुम जैसी कोई हिम्मती और योग्य जीवन साथी मिल जाती। रूपा, तुमने नारी के अंतर की उस भावना पर विजय पाई है जिसने सदियों तक उसे दबा कर रखा, कुंठित कर रखा था। तुमने तो प्रतिमान बदलने के प्रयास किए, और ये
0: बस कीजिए राजेश बाबू, किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि एक बार फिर से सोच लें।
3: सोच लिया रूपा, बस अब ना मत करना। हाँ, तुम्हें अगर सोचने का समय चाहिए तो मैं प्रतीक्षा कर सकता हूँ।
0: क्या बातें हो रही है, मैं भी तो सुनूं।
3: माँ जी, माँ जी, मैं आपकी रूपा से, मेरा मतलब है मैं आपकी रूपा से शादी करना चाहता हूँ। माँ जी,
0: क्या राजेश बेटा, तुम मेरी रूपा से?
2: हाँ माँ जी, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो।
0: अरे अरे, मुझे

श्रोताओं, अभी आप मीना आनंद द्वारा लिखित नाटक बदलते प्रतिमान सुन रहे थे। कलाकार थे सरजू लाल, एन त्यागराजन, इस्माइल खान, नरेश चंद्र लाल, आशा मल्होत्रा, रघुवंश घोष, राजेश कुमार निराश और तृप्ति सान्याल। प्रस्तुतकर्ता थे सतीश माथुर।

लाइव फोन आउट प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स आप सुनते हैं सोमवार बुधवार और शुक्रवार को। समय दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक। अब स्टूडियो से प्रेजेंटर्स आपको फोन करते हैं और मनपसंद गीतों से सजाते हैं महफिल को। अब तक आपने अपना नाम पता व फोन नंबर हमारे पास दर्ज ना कराया हो तो जल्दी से दर्ज कराएं इस नंबर पर 9474234000। इस प्रोग्राम का भरपूर आनंद आप लेते हैं हमारे विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम चैनल पर सप्ताह के 3 दिन 2:30 बजे से।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं।

श्रोताओं, अब एक नजर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। शाम 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम एवं जनसूचनाएं दी जाएंगी। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। तत्पश्चात 7:30 पर युवाणी में होगा पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार, जिसमें आप सुनेंगे सहायक वन संरक्षक डॉक्टर मोनिदीपा चौधरी से ली गई भेंट वार्ता। विषय रहेगा वन महोत्सव 2026 हरित भविष्य की ओर। और रात 8 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

इसी समय पर FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई से प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। तत्पश्चात 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान में आप सुनेंगे मध्य अंडमान के सहायक आयुक्त श्री दीपांशु बोरा से टेलीफोन पर ली गई भेंटवार्ता। विषय रहेगा रंगत मानसून मैराथन, साथ ही कुछ फिल्मी गीत भी आप सुन पाएंगे। कल दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी लाइव फोन आउट प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स के साथ। तत्पश्चात 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5:00 तमिल कार्यक्रम के साथ। 5:30 पर बांग्ला में आप सुनेंगे आधुनिक गीत। शाम 6:00 कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर ए के सिंह से बातचीत की जाएगी, विषय रहेगा अरहर की खेती को लाभदायक कैसे बनाएं। तत्पश्चात 6:30 पर सुनिए समाचार तरंगिणी। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की तीसरी कड़ी सुनवाई जाएगी 6:45 पर। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 6:55 पर। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम एवं जनसूचनाएं दी जाएंगी 7:15 पर। सात बजकर 20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। तत्पश्चात 7:30 पर युवाणी में वन महोत्सव पर चर्चा के बाद होगा फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम, चित्रपट संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात 8:00। 8:30 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार। तत्पश्चात होगा कार्यक्रम गौरवगान। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस अंतराल के बाद।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइचिया 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। दोनों देशों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत में आर्थिक, ऊर्जा, सुरक्षा और AI सहित कई समझौते हुए। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के साथ मध्य अंडमान के रंगत में 77वें वन महोत्सव का भव्य शुभारंभ कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। CRC वृक्षवाद की पहल से दक्षिण और उत्तर एवं मध्य अंडमान में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए निशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। और अंडमान निकोबार पुलिस मुख्यालय में दैनिक सरकारी कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक उपयोग के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेरित किया गया।

सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान

0: की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरती है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: इस अवसर पर भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा। मध्य अंडमान वन प्रभाग द्वारा रंगत में आज 77वें वन महोत्सव 2026 के तहत एक माह तक चलने वाले वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित उद्घाटन समारोह एवं सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन सेंट जेवियर्स मिडिल स्कूल रंगत परिसर में किया गया। कार्यक्रम में मध्य अंडमान के सहायक आयुक्त की उपस्थिति में लगभग 150 छात्र छात्राओं, शिक्षकों, पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी कर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास का संदेश दिया। सामूहिक वृक्षारोपण के बाद आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया, जबकि बकुंतला रेंज के कर्मचारियों एवं श्रमिकों ने वनों के महत्व तथा वनों की कटाई के दुष्परिणामों पर आधारित मूक नाटक प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्य अंडमान वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी विकास यादव ने वनों के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। प्रारंभ में एसीएफ मुख्यालय सुकुमार दास ने स्वागत भाषण दिया। समारोह में विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। अंत में एसीएफ मध्य अंडमान अलकाब हसन ने सभी प्रतिभागियों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बीच की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। मंत्रालय ने बताया कि नामांकन awards.gov.in पोर्टल पर किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार कठिन परिस्थितियों में असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वालों को भी दिया जाता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है शिविर और हिंदी कार्यशाला। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस भी एफएम रेडियो पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। वृक्षाबाद स्थित कंपोजिट रीजनल सेंटर ने समाज कल्याण निदेशालय के सहयोग से दक्षिण अंडमान तथा उत्तर एवं मध्य अंडमान जिलों में एडीआईपी और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण के लिए मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया। इसी प्रकार पीएससी फ्रारगंज और बाराटांग, सीएससी रंगत, जिला अस्पताल मायाबंदर तथा सीएससी डिगलीपुर में शिविर लगाए गए। एल्मिको और अनिम्स के विशेषज्ञों की टीम ने लगभग 300 दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों का चिकित्सीय परीक्षण, स्क्रीनिंग तथा दस्तावेज सत्यापन किया। पात्र लाभार्थियों को व्हीलचेयर, वॉकिंग स्टिक, श्रवण यंत्र, एलएस बेल्ट, नी ब्रेस, सर्वाइकल कॉलर सहित अन्य सहायक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। निदेशक सुमिता मूल एस ने समाज कल्याण विभाग, एल्मिको, आईओसीएल, जिला

शासन, स्वास्थ्य संस्थानों, पंचायती राज संस्थाओं तथा सभी सहयोगी एजेंसियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसे ही प्रयास जारी रहेगा। अंडमान निकोबार पुलिस मुख्यालय के सभागार में हाल ही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक बलराम ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी देश की राजभाषा है और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दैनिक कार्यालयीन कार्यों में इसका अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने राजभाषा के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभाग में हिंदी के व्यापक उपयोग पर बल देते हुए अंडमान एवं निकोबार पुलिस को इस दिशा में एक आदर्श विभाग बनने का आह्वान किया। समापन समारोह में गृह निरीक्षक जोजू के मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि राजभाषा नियमों का पालन वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य है। उन्होंने प्रतिभागियों से कार्यशाला में प्राप्त ज्ञान का उपयोग नियमित सरकारी कार्यों में करने का

0: इकाइयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक बलराम ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी देश की राजभाषा है और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दैनिक कार्यालयीन कार्यों में इसका अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने राजभाषा के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभाग में हिंदी के व्यापक उपयोग पर बल देते हुए अंडमान एवं निकोबार पुलिस को इस दिशा में एक आदर्श विभाग बनने का आह्वान किया। समापन समारोह में गृह निरीक्षक जोजू के मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि राजभाषा नियमों का पालन वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य है। उन्होंने प्रतिभागियों से कार्यशाला में प्राप्त ज्ञान का उपयोग नियमित सरकारी कार्यों में करने का आग्रह किया तथा उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यशाला में वरिष्ठ हिंदी अनुवादक सत्य नारायण एवं कनिष्ठ अनुवादक अजय सिंह ने राजभाषा संबंधी व्याख्यान प्रस्तुत किए। खेल एवं युवा मामले निदेशालय ने अपने सभी मौजूदा सदस्यों, नए आवेदकों, प्रशिक्षुओं, गैर सदस्यों तथा विभाग से जुड़े विद्यार्थियों से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एंटी ड्रग पोर्टल पर पंजीकरण कर ई प्रतिज्ञा लेने की अपील की है। निदेशालय ने कहा है कि सभी संबंधित व्यक्ति निर्धारित पोर्टल पर पंजीकरण कर ई प्रतिज्ञा पूरी करें और उसके बाद जारी प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सुरक्षित रखें। विभाग के अनुसार खेल सुविधाओं का लाभ लेने के लिए सदस्यता ग्रहण करने या सदस्यता के नवीनीकरण के समय एंटी ड्रग पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर सदस्यता आवेदन या नवीनीकरण पर विचार नहीं किया जा सकेगा। खेल एवं युवा मामले निदेशालय ने सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, प्रशिक्षुओं, सदस्यों और खेल प्रेमियों से इस राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील करते हुए कहा है कि नशा मुक्त वातावरण स्वस्थ खेल संस्कृति की आधारशिला है। विभाग ने सभी से इस पहल को सफल बनाने और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त खेल वातावरण के निर्माण में सहयोग देने का आह्वान किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। दोनों देशों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत में आर्थिक, ऊर्जा, सुरक्षा और एआई सहित कई समझौते हुए। एक पेड़ मां के नाम अभियान के साथ मध्य अंडमान के रंगत में 77वें वन महोत्सव का भव्य शुभारंभ कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। सीआरसी वृक्षाबाद की पहल से दक्षिण और उत्तर एवं मध्य अंडमान में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए निशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया और अंडमान निकोबार पुलिस मुख्यालय में दैनिक सरकारी कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक उपयोग के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेरित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7:15 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खराब मौसम के कारण समुद्र में वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलेगी, जो कि बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। अतः मछुआरों को रविवार 5 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल शाम तक के मौसम संबंधित पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के एक या दो भागों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेगी एवं द्वीपों के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी और अब जलयान संबंधी सूचना। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी कैम्बल बे विशाखापत्तनम की यात्रा पर कल शाम 4 श्री विजयपुरम से जाएगा। यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने का कार्य दोपहर 1 से 3 के बीच किया जाएगा। एमवी रानी लक्ष्मी मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल सवेरे 7 श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान शनिवार 4 को सवेरे 7 डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी सेंटिनल कल रात 8 लिटिल अंडमान के लिए श्री विजयपुरम से रवाना

होगा तथा इसकी वापसी होगी शनिवार 4 तारीख को सवेरे 8 बजे लिटिल अंडमान से। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर कल प्रातः 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान शनिवार 4 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी सेंटिनल कैम्बलवे के लिए बृहस्पतिवार 9 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी होगी रविवार 12 तारीख को रात 9 बजे कैम्बलवे से। जाते व आते समय ये जलयान लिटिल अंडमान, कार निकोबार, चौरा, तेरेसा, कचाल, नानकौरी, माकाचुआ और अफराबे में भी रुकेगा। जलयान नालंदा नानकौरी होते हुए कैम्बलवे की यात्रा पर मंगलवार 7 तारीख को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान बृहस्पतिवार 9 तारीख को सुबह 8 बजे कैम्बलवे से छूटकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए यात्रा करेगा। एमवी जॉली बॉय सूरज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल प्रातः 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और सूरज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से। एमवी नॉर्थ पैसेज कल सवेरे 6:15 पर स्वराज द्वीप के लिए छूटेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप के लिए कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी रंगत स्वराज द्वीप के लिए कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी बाराटान शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से। एमवी हडबे स्वराज द्वीप के लिए कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान परसों शनिवार 4 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं और प्यार हो गया फिल्म के इस गीत से, जिसे आवाज दी उदित नारायण ने।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं इकबाल साबरी का लिखा एवं साजिद वाजिद का संगीतबद्ध किया हुआ गीत प्यार किया तो डरना क्या फिल्म से। आवाजें हैं इकबाल अफजल साबरी और साथियों की।

इकबाल अफजल साबरी, अनुपमा देशपांडे और साथियों की आवाज़ों में ये गीत था प्यार किया तो डरना क्या फिल्म से। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युवाणी।

0: युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज बृहस्पतिवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
1: पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
0: दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव सप्ताह पूरे देश में मनाया जा रहा है। दोस्तों, वन हमारी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वन हमें धूप में छाया जब जरूरत पड़े तब, लकड़ी सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और कई अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें प्रदान करती हैं, और वन को संरक्षित रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। वन जलवायु परिवर्तन को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी संदर्भ में हम आपको सुनवाते हैं डॉक्टर मोनिदीपा चौधरी, सहायक वन संरक्षक से ली गई ये भेंट वार्ता। वन महोत्सव 2026, हरित भविष्य की ओर।

सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, वृक्ष धरा का श्रृंगार है, जीवन का आधार है। पेड़ पौधे केवल प्रकृति की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि स्वच्छ वायु, शुद्ध जल, जैव विविधता और संतुलित पर्यावरण के भी आधार हैं। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन

0: पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है, तब वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण हम सभी की साझा जिम्मेदारी बन गई है। इसी उद्देश्य को लेकर प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है, जो हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनका संरक्षण करने के लिए प्रेरित करता है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट श्रीमती मोनिदीपा चौधरी को। मोनिदीपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद मैम।
0: सबसे पहले तो आप बताएं कि जो वन महोत्सव है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्या इतिहास है
1: इसको मनाए जाने के पीछे? उद्देश्य है नागरिकों के मन में वनों के संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और वृक्षारोपण के प्रति उत्साह जगाना। भारत में वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर के एम मुंशी ने की थी। डॉक्टर के एम मुंशी ने इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय गतिविधि घोषित किया। उनकी सोच इसे महज एक अभियान न रखकर एक बड़े सांस्कृतिक और प्रकृति प्रेम के त्यौहार के रूप में मनाने की थी, ताकि लोग इसे खुशी और उत्साह से मनाएं।
0: यदि किसी नागरिक को पौधरोपण करना हो तो वर्षा ऋतु में किन किन बातों को विशेष ध्यान में रखना होगा?
1: ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा स्थान चुने जहाँ पानी जमा ना हो, यानी कि पेड़ लगाने से पहले हमें ऐसे स्थान का चुनाव करना है जहाँ पानी जमा ना हो। पौधों की जड़ के फैलाव से 2 गुना बड़ा गड्ढा खोदे, ताकि पौधे आसानी से पनप सके। गड्ढे में मिट्टी के साथ साथ जैविक खाद और थोड़ी नीम की खली भी मिलाए। पौधों को उतनी ही गहराई में लगाए जितनी की नर्सरी के थैली में वो लगे हुए थे, ताकि जो है वो अच्छे से पनप सके। और बारिश और तेज हवा इनसे बचाने के लिए इनको लकड़ी का या एक बांस का खूंटा सपोर्ट दे, ताकि जो है पेड़ टूटे ना और आसानी से बड़े हो सके। और अगर आप कहीं ऐसे जगह पेड़ लगा रहे हैं जहाँ की आपको लगता है कि जानवरों से उसको डिस्टर्बेंस पहुँचेगा, तो वहाँ पर आप या फेंसिंग करें या फिर ट्री गार्ड्स भी उसमें अवश्य डालें।
0: अब देखिए, हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं और यहाँ यदा कदा प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, चाहे वो साइक्लोन के रूप में हो या भूकंप के रूप में हो। तो ऐसे में वनों की कटाई और प्राकृतिक आपदा, इसका क्या संबंध है आपस में?
1: प्राकृतिक आपदा और वनों की कटाई का सीधा सीधा संबंध है। जैसे हम आजकल टीवी में आए दिन देखते हैं कि भारत, हमारे देश के ही कई राज्यों में बारिश होते साथ ही भूस्खलन यानी कि मिट्टी का कटाव स्टार्ट हो जाता है। कई जगहों पे जो है पहाड़ जो है खिसक के नीचे आ जाते हैं, जिससे कि जनजीवन पर असर पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम अंडमान में भी देख चुके हैं कि जब हमारे यहाँ पर 2004 में सुनामी आया था, तब हमने रियलाइज किया था कि वन जहाँ पर भी है, अंडमान में उतना क्षति नहीं पहुंचा था, क्योंकि यहाँ पर वनों की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो वन जो है आपका बाढ़ को रोकने के लिए, बाढ़ का जो प्रकोप है उसको रोकती है, बारिश का चक्र जो है उसको नियंत्रित करती है। क्योंकि आजकल आपको पता होगा एक न्यू टर्मिनोलॉजी आया हुआ है कि एल नीनो, शायद इस साल जो है मॉनसून पे असर बहुत ज़्यादा हुआ है इंडिया में, और एल नीनो उसका एक कारण है। तो ये एल नीनो या फिर जो मॉनसून का जो चक्र है उसमें परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग के चलते है, और अगर हम वनों की अंधाधुंध कटाई को रोक सके और वनों को बढ़ा सके, तो हम ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से खुद को बचा सकते हैं।
0: मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों के लिए कितने महत्वपूर्ण है, विशेषकर हमारे द्वीप समूह के लिए?
1: जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जब 2004 के सुनामी के दौरान हमने देखा था कि जहां मैंग्रोव वन थे वहां पर नुकसान बहुत कम हुआ था, उसकी तुलना में जहां की मैंग्रोव वन नहीं थे। साथ ही मैंग्रोव केवल अपने में एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कि समुन्दर के पानी और मीठे पानी का जहां सम्मेलन होता है वहां पर ये पनपते हैं, और ये ना केवल मनुष्य के लिए ही बहुत ही लाभदायक है, बल्कि ये समुद्री जीवों के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। समुद्री जीव इसी मैंग्रोव वन में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्रजनन प्रक्रिया के लिए या नर्सरी के लिए जो है अपने अंडों को जो है बड़ी मछलियां या अन्य समुद्री जीव यहां पर मैंग्रोव्स में आते हैं, यहाँ पर अपना प्रजनन और अपनी नर्सरी की प्रक्रिया पूरी करते हैं, छिपने के लिए या अपने रहने के लिए भी। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैंग्रोव्स एक रेस्टोरेंट भी है, एक अच्छा नर्सिंग ग्राउंड भी है, एक सुरक्षित आवास भी है। आम शब्दों में कहे तो मैंग्रोव्स की भूमिका बहुत ज्यादा है,
0: जीव जंतुओं के लिए एकदम सुरक्षित स्थल है मैंग्रोव।
1: हाँ, और सबसे बड़ी बात कि ये कार्बन सिंक का काम करती है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग को हम काफी हद तक रोक सकते हैं। और सबसे मुख्य बात, जहां मैंग्रोव्स है, जैसे कि आपने शायद मिडिल अंडमान में देखा होगा धनी नाला और ऐसे कई जगह है जहां की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट के ओर से जो है मैंग्रोव वॉकवेज बनाए गए हैं
0: जी,
1: वहां पर इको टूरिज्म को बढ़ाने में काफी मदद मिलता है, पर्यटक

0: काफ़ी तादाद में वहाँ पर जाते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मैंग्रोव्स अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है, साथ में जो है प्राकृतिक आपदाओं से भी हमें बचाती है।
1: जी मुनिदीपा जी, ऐसा है कि बहुत से लोग हैं जो बागवानी में, पेड़ पौधों में बड़ा रुचि लेते हैं, तो उन्हें बड़े साल भर इंतज़ार रहता है कि शायद इस बार निःशुल्क अगर उनको सीडलिंग मिल जाए तो वो पौधरोपण करें। तो ऐसी भी कोई व्यवस्था है इस वन महोत्सव में?
0: जी, हमारे डिपार्टमेंट के नर्सरी जो है आपको हर जगह मिल जाएंगी, जहाँ से कि हम लोगों को मुफ्त में सीडलिंग्स उपलब्ध कराते हैं, और वो चाहे तो फ्रूट बियरिंग सीडलिंग्स हो, जैसे इमली हो गया, जामुन हो गया, उसके बाद नोनी का पेड़ हो गया, मेडिसिनल्स भी कुछ पेड़ होते हैं और कुछ फ्रूट बियरिंग होते हैं, और इसके अलावा जो भी नीम का पेड़ हो गया, तो ऐसे जितने भी पेड़ पौधे हैं हम चारा बनाकर रखते हैं, ताकि कोई भी अगर आम नागरिक आए और अपने बाग बगीचे में पेड़ लगाना चाहे तो वो हमसे लेके जा सकते हैं, और ये सुविधा एकदम निःशुल्क है।
1: अब ये बताएं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस दौरान पौधरोपण तो करता ही है, लेकिन इनके संरक्षण और उनकी निगरानी के लिए क्या व्यवस्था की जाती है?
0: सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमने कहाँ पर पेड़ लगाए हैं या पेड़ लगाने जा रहे हैं। अगर वो एक ऐसा सुरक्षित जगह है जहाँ की कैटल इंटरफेरेंस ना हो तो वहाँ पर तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ कहीं पर भी रास्ते के किनारे में या कहीं ऐसा जगह लगाए जहाँ की खुला जगह है, तो वहाँ पर हम ट्री गार्ड्स वगैरह डालते हैं। उसके
1: जी
0: अलावा इस मौसम में तो हम अगर पेड़ लगा देते हैं तो काफ़ी दिनों तक उसको पानी तो मिलता रहता है, लेकिन अगर कभी सूखा पड़ जाए या फिर गर्मी का दिन आ जाए, तो हम कोशिश करते हैं कि हम जो आसपास के सूखे पत्तियां हैं उनको जमा करके वहां पर थोड़ा नमी छिड़क दे, ताकि जो है वो रूट्स में पानी को उपलब्ध करा सके। तो
1: जी
0: इस तरह की छोटी छोटी व्यवस्थाएं, फिर कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट भी हम करते हैं, इस साल लगा दिया तो आसपास के झाड़ियों को भी काटते रहते हैं, ट्री गार्ड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि पेड़ जो है आसानी से पनप सके, तेज हवा और बारिश के चलते वो गिर ना जाए, टूट ना जाए, ये सब भी हम देखते हैं।
1: अब ये बताएं कि क्या हमारे द्वीप समूह में कुछ ऐसी स्थानीय वृक्ष प्रजातियां हैं जिन्हें अधिक से अधिक लगाया जाना चाहिए?
0: जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे, जैसे कि सभी को पता होगा वो है हमारे अंडमान पडॉक, जो कि बहुत ही एक विशेष लकड़ी है, एक ऐसी ट्री है जिसका फर्नीचर शायद हर घर में होगा। हालांकि इसको बढ़ने में और इसको टिम्बर प्रोड्यूस करने में 80 से 100 वर्ष लगते हैं, लेकिन अगर आज हम इस एक पहल करें तो आने वाले पीढ़ियों को एटलीस्ट
1: जी
0: पडॉक क्या पेड़ है वो तो पता रहेगा।
1: जी जी
0: साथ ही गर्जन, इतना ऊंचा ट्री है और वो देखने में बड़ा सुंदर लगता है, एकदम स्ट्रेट जाता है ऊपर तक, वो भी है। उसके अलावा कई मेडिसिनल प्लांट्स है जो कि आप यहाँ पर लगा सकते हैं, नोनी वगैरह है। उसके अलावा जो है आप यहाँ पर खट्टा फल लगा सकते हैं रोड साइड में। बीच में हमारे सरकार की तरफ से एक डायरेक्शन आया था कि हम मैक्सिमम फ्रूट बियरिंग सीडलिंग्स लगाएं, ताकि यूनाइटेड नेशंस का जो एक गोल था जीरो हंगर का, तो उसको जो है हम अचीव कर सके,
1: जी
0: क्योंकि विपदाओं का दौर अभी चल रहा है, तो कभी भी अगर कोई विपदा आती है तो अगर हम जितने फलदार वृक्ष लगाएंगे तो एटलीस्ट हमारा आइलैंड जो है कट ऑफ है मेनलैंड से, तो यहाँ पर एटलीस्ट कुछ फलदायक वृक्ष जो है हमें विपदा में सहायता कर सकते हैं।
1: जी जी अंत में वन महोत्सव 2026 के अवसर पर क्या कहना चाहेंगी आप?
0: मैं श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि पेड़ लगाना केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित सांस लेने योग्य और हरी भरी दुनिया का निर्माण करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि आज हम पेड़ लगाएं, ताकि आने वाला पीढ़ी सुरक्षित रह सके। एक छोटा पौधा कल विशाल और जीवनदायी वृक्ष बन सकता है हमारे एक छोटे से पहल से। वन महोत्सव के इस पावन अवसर पर हम वनों को संरक्षित करने और प्राकृतिक संतुलन को वापस लाने के लिए मिलकर काम करें, ऐसी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है।
1: तो श्रोताओं, आइए हम सभी इस वन महोत्सव 2026 पर केवल एक पौध लगाने का ही नहीं, बल्कि उसकी नियमित देखभाल और संरक्षण का भी संकल्प लें, क्योंकि आज लगाया गया एक पौधा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और सुरक्षित पर्यावरण का अमूल्य उपहार देगा। तो मोनिदीपा जी, आज आप कार्यक्रम में आई, आपने वन महोत्सव से संबंधित बहुत सारी बातों को हमारे श्रोताओं के साथ साझा की है। हम समझते हैं कि आपने जो बातें बताई हैं, हमारे श्रोता ज़रूर इस पर गौर फरमाएंगे। कार्यक्रम में आने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।

0: वन महोत्सव 2026
1: हरित भविष्य की ओर।
0: अभी आप डॉक्टर मोनी दीपा चौधरी, सहायक वन संरक्षक से ली गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे, जिसकी भेंट करता थी।

दोस्तों, 4 जुलाई 2026 को रंगत में होने जा रहा है एक मॉनसून मैराथन। और इस संदर्भ में हमने बात की मिडल अंडमान के सहायक आयुक्त श्री दीपांशु वोरा से, और इस मॉनसून मैराथन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।

0: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि शनिवार 4 जुलाई को रंगत मॉनसून मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं मध्य अंडमान के सहायक आयुक्त श्री दीपांशु वोरा। दीपांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद मैडम।
0: सबसे पहले तो आप बताएं कि रंगत मॉनसून मैराथन के आयोजन का उद्देश्य क्या है?

0: जी, जैसा हम जानते हैं कि हमारे जीवन में फिटनेस का और हेल्थ का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, और हम यही चाहते हैं इस मैराथन के माध्यम से कि हमारे जितने भी युवा हैं हमारे अंडमान के, स्पेसिफिकली रंगत के और नॉर्थ एंड मिडल अंडमान के, वो पार्टिसिपेट करें और समाज को एक बेहतर मैसेज दें कि फिट रहना, स्वास्थ्य कितना जीवन में महत्वपूर्ण है। तो इसी के अंतर्गत हमने सोची कि क्यों ना हम अपने रिसोर्सेज को लगाकर एक छोटा सा प्रयास करें, तो उसी की दिशा में हमने ये मैराथन का आयोजन करा। इसका थीम भी है रन फॉर हेल्थ यूनिटी एनवायरनमेंट, कि किस प्रकार से हम अपना जीवन का जो स्वास्थ्य है, हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य को हम कैसे जो है पर्यावरण से जोड़ें, यही हमारा इसका थीम है। ये हमारा पहली बार आयोजित किया जा रहा है इस लेवल का। छोटे छोटे मैराथन डिपार्टमेंट के इससे पहले हुए हैं, बट इतने बड़े स्केल पे ये मैराथन पहली बार आयोजित किया जा रहा है।
1: अब मैराथन के बारे में बताएं, कौन कौन भाग ले सकता है, क्या विभिन्न आयु वर्गों के लिए क्या क्या श्रेणियां रखी गई हैं?
0: जी बिल्कुल, तो इसमें महिला और पुरुष दो इसके भाग हमने रखे हैं, मेन एंड वुमेन, एंड इट इज ओपन टू ऑल एजेस। एज सच एज ब्रैकेट कुछ नहीं है। पुरुष के लिए 10 किलोमीटर का इसमें स्ट्रेच रहेगा, निम्बूतला चौक से शुरू करते हुए काली मंदिर, आम कुंज, चित्रकूट, मॉरिस डेरा और उसी रूट से वापस आते हुए। और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उनका रूट भी सिमिलर रहेगा, निम्बूतला चौक, काली मंदिर, आम कुंज, चित्रकूट, बस मॉरिस डेरा ना जाके वो चित्रकूट से ही वापसी उनका रहेगा।
1: जी, तो देखिए मानसून का मौसम है, इस मौसम को देखते हुए प्रतिभागियों की सुरक्षा और चिकित्सा व्यवस्था के लिए क्या क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं?
0: हमने पुलिस को डायरेक्शन दे दी है कि वो दोनों ओर से ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलने दे, क्योंकि ATR को हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन 2 किलोमीटर दोनों साइड से हम बैरिकेडिंग करके ट्रैफिक मूवमेंट को एडवाइजरी जारी कर देंगे कि सामने से हमारे प्रतियोगी दौड़ रहे हैं तो वो कृपया उस हिसाब से गाड़ी चलाएं, और फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सबको हमने उस दिन के लिए मोबिलाइज कर लिया।
1: लोगों की प्रतिक्रिया कैसी है और अब तक कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है?
0: प्रतिक्रिया बहुत ही उत्साहित है लोग। हमने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उन्होंने स्कूल स्कूल में इस बात का प्रचार किया और हमें लगभग 50 से 60 लोगों का तो सिर्फ स्कूल से रजिस्ट्रेशन आ चुका है। इसके उपरांत पंचायतों से जो बाकी वर्ग के लोग हैं, युवा और बाकी लोग, वो जो है अपना पंजीकरण करा रहे हैं। तो मध्य अंडमान में हमारे पास 14 पंचायतें हैं, तो सब पंचायतें लगभग 10 से 15 प्रतियोगियों का रजिस्ट्रेशन पर प्रति पंचायत हो रहा है, तो काफी भारी संख्या में लोग उत्साहित हैं और इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक हैं।
1: फिर भी क्या अनुमान लगा रहे हैं कि कितने प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है?
0: लगभग 200 से 250 लोग हम अनुमान लगा रहे हैं।
1: स्थानीय युवाओं और खेल प्रेमियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन क्या प्रयास कर रहा है?
0: प्रशासन जो है अपना मैसेज जो है रेडियो के माध्यम से, और यहाँ पे हम जगह जगह जाके पंचायत अपने एरिया में जाके नागरिकों को प्रोत्साहन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कैश अवार्ड भी अच्छा खासा है। तो जो प्रतियोगी आना चाहते हैं, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो अन्य फिटनेस एग्जाम्स की हमारी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है अपनी प्रतिभा को दिखाने का। अपनी जो मेहनत है वो कर रहे हैं, डेली फिटनेस के लिए लोग दौड़ रहे हैं पुलिस में जाने के लिए, तो वो बहुत उत्साहित लोग हैं। उनको हमने अपने विभिन्न माध्यम से, न्यूज़पेपर में, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अलग अलग तरीके से अपना मैसेज उन तक पहुंचा दिया है। पीपल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट।
1: आप प्राइस के बारे में बता रहे थे, थोड़ा डिटेल्स में बताइए कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आएंगे उनके लिए क्या प्राइजेस हैं?
0: दोनों मेन एंड विमेन के लिए फर्स्ट प्राइज इज 10,000 रुपीज कैश अलॉन्ग विद 1 सर्टिफिकेट एंड 1 ट्रॉफी, एंड सिमिलरली फॉर सेकंड प्राइज इट इज 7,000 प्लस सर्टिफिकेट प्लस ट्रॉफी, एंड फॉर थर्ड प्राइज इट इज 5,000 रुपीज कैश प्लस सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफी अक्रॉस मेन एंड विमेन बोथ।
1: जी, प्रतिभागियों को दौड़ से पहले और दौड़ के दौरान किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: विशेष ध्यान हमें इन बात का रखना है कि दौड़ते वक्त जो है हम अपने सहयोगियों का भी ध्यान रखें। हमें प्रतियोगिता जीतनी तो है, परंतु इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें खेल भावना का सही तरीके से परिचय देना है। एंड सुबह अगर हम लाइट थोड़ा खा के आएंगे तो हमें लंबे दौड़ने में मदद मिलेगी, तो उस प्रकार से हमें जो है अपने ब्रेकफास्ट का ध्यान रखना है। एंड प्रतियोगियों के लिए हमने जूस की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था जगह जगह स्पॉट्स पे करी है। अगर 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है तो उसमें मान के चलिए 7 से 8 जगह पे उनके लिए टेबल का व्यवस्था की गई है, जिसमें उनको पानी दिया जाएगा, जूसेस दिया जाएंगे, ताकि उनको डिहाइड्रेशन की समस्या से जूझना न पड़े।
1: 4 जुलाई को आयोजित हो रहा है, समय क्या रहेगा दीपांशु जी?
0: इसको हम कोशिश करेंगे कि 5:30 पे हम इसको शुरू करें और इसको हम लगभग 7 बजे तक इसमें हमारा जो कार्यक्रम है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके साथ इसको समय से खत्म करें, ताकि जो सुबह ट्रैफिक आना है उससे हम बच सके।
1: जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं उनको आपका क्या संदेश होगा?
0: मैं उनसे बस यही गुजारिश करूंगा कि हमने मैसेज के साथ फोन

0: डॉक्यूमेंट्स उसमें दिए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपना नाम और रजिस्ट्रेशन करवाइए। परंतु अगर इसके बावजूद कोई प्रतियोगी नहीं करा पाता है रजिस्ट्रेशन, तो हमने ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था उसके लिए की है।
1: यानी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो समय से पहले आकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: यदि कोई पहली बार मैराथन में भाग ले रहा है या भाग लेना चाहता है तो उनको आप क्या कहेंगे?
0: आई थिंक ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। हालांकि अगर वो पहली बार भाग ले रहे हैं तो उनको ये समझना पड़ेगा कि 10 किलोमीटर दौड़ना और वो भी एक रेस के माध्यम से कि आपको उसको खत्म करना, तो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है। तो अपनी एनर्जी शुरू में जो है उसको व्यर्थ ना करें, क्योंकि आपको मैराथन का मतलब ही है कि आपको लंबी दौड़ चलनी है, तो आपको अपनी एनर्जी उस हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करनी पड़ेगी। एंड मेरा ये मानना है कि इसमें भाग लेना ही एक बहुत एक बोल्ड मूव है, एक बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है, क्योंकि इतने बड़े प्रतियोगिता में भाग लेना ही बहुत लोग नहीं कर पाते इतना भी। तब तो यही गुजारिश है कि सिर्फ खेल भावना को ध्यान में रखते हुए अभी सिर्फ पार्टिसिपेट करने का सोचें, और अगर आप अपने एफर्ट अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली आप जीत भी सकते हैं।
1: जी, अब ये बताएं कि द्वीपों के अन्य क्षेत्रों से आने वाले प्रतिभागियों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं वहाँ?
0: जी, हमने हमारे माया बंदर से और बाराटांग से जो हमारे युवा जो आ रहे हैं उनके लिए हमने स्पेशल बस की व्यवस्था करी है, और हम ये कोशिश करेंगे कि जितने भी युवा हैं हमने निर्देश दे दिया कि उनसे कोई भी टिकट वसूल ना की जाए, स्पेशली जो बच्चे हैं। और इससे मेरी एई एसपीएस से भी बात हुई है कि उनके लिए निःशुल्क बस की व्यवस्था हमने की है। एंड पोर्ट ब्लेयर के लिए लोगों को हमने बता दिया है, वहां पे प्रतियोगी से जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, क्योंकि उन्हें एक दिन पहले यहाँ पे आना पड़ेगा, तो वो तो बस हमारी सुचारू रूप से चली रही है, तो लोग बहुत उत्साहित हैं। और हमने नॉर्थ एंड मिडल अंडमान के लिए स्पेशल बस की व्यवस्था करी है।
1: आप क्या मानते हैं कि क्या इस आयोजन से रंगत में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है?
0: जी जी बिल्कुल, स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलने की बिल्कुल उम्मीद है। अगर इतने लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो वो थोड़ी देर आएंगे, रुकेंगे, तो हमारे जितने भी आसपास की दुकानें हैं उसमें सेल होगा, वो यहाँ के जो जितने हमारे टूरिस्ट स्पॉट है डेफिनेटली उसमें से कुछ लोग उनको देखने जाएंगे। हमारे पास रमन बगीचा है, आम कुंज, चित्रकूट जैसे इतने अच्छे इकोलॉजिकल टूरिस्ट स्पॉट है, तो डेफिनेटली एक पुश मिलेगा यहाँ पे टूरिज्म को। और यही हमारा माध्यम है कि किस तरीके से हम रंगत को अलग विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में आगे लेके जाएं, तो यही इसका प्रयास है इस मैराथन पर।
1: जैसा कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग फिटनेस से दूर होते जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसे आयोजन लोगों की जीवन शैली बदल सकती है?
0: जी डेफिनेटली, जीवन शैली को बदलना बहुत आवश्यक है। अगर हम 25 से 30 वर्ग के लोगों की भी बात करें, सिर्फ युवाओं की बात नहीं है, हम अपनी रोजमर्रा की नौकरी में जॉब पे सीमित हो जाते हैं, जिसके कारण हम फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर पाते, तो मैं ना ही केवल बच्चों से बल्कि नौकरी करने वाले युवाओं से भी ये उम्मीद करूंगा कि वो इस मैराथन में आए, क्योंकि शरीर की फिटनेस मेंटल फिटनेस जितनी ही इम्पोर्टेंट है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा, और इसमें ये एक महत्वपूर्ण स्टेप हम ले रहे हैं।
1: भविष्य में भी इस मैराथन को नियमित वार्षिक आयोजन के रूप में जारी रखने की योजना है?
0: जी बिल्कुल, हमने यही सोचा है कि अगर इस मैराथन का हमें सक्सेस मिलता है, जो हम बहुत होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है कि हमें मिलेगा, तो हम फ्यूचर में भी इसको एक वार्षिक इवेंट बनाएंगे। एंड सिर्फ मैराथन तक सीमित ना रह करके हमने ये डिसाइड किया है कि बैडमिंटन, क्रिकेट कोर्ट जैसे कि फुटबॉल और अन्य स्पोर्ट्स भी हम आयोजन करेंगे रेगुलर इंटरवल्स पर रंगत में।
1: क्या आपको लगता है कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक सोच, आपसी भाईचारे और सामुदायिक सहभागिता को भी मजबूत करते हैं?
0: जी डेफिनेटली, ये बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि कभी कभी हम जो है अपने रोजमर्रा के जीवन में इतने उलझ के रह जाते हैं कि हम समाज के प्रति, हमारे लोगों के प्रति हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता, उनके प्रति हमारा क्या दायित्व है ये हम नहीं सोच पाते। ऐसे आयोजन में जब विभिन्न विभिन्न प्रकार के डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन के लोग एक साथ दौड़ते हैं, तो हम सबको वो मैसेज मिलता है कि है तो हम सब इंसानी, और वो जो यूनिटी है जो हमें एक बनाती है, स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा माध्यम है हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक करने।
1: अब एक पर्सनल सा सवाल, आप स्वयं फिट रहने के लिए क्या दिनचर्या अपनाते हैं और युवाओं को आपका क्या संदेश होगा?
0: जी, स्वयं फिट रहने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं शाम को जो है एटलीस्ट एक घंटा जिम में जाऊँ और अपनी डाइट को शुगर फ्री और मैदा फ्री रखूँ। तो अभी मैं अंडमान में इतनी अच्छी जगह में मैं पोस्टेड हूँ, रंगर एक बहुत ही अच्छी जगह है, और यहाँ पे मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी जाता हूँ, हम जिम भी जाते हैं, और खाने पीने को हमें कैसे कंट्रोल करना है, हेल्दी ऑप्शन को कैसे अपने डाइट में इंक्लूड करना है, शुगर फ्री, मैदा फ्री, यही हमारा प्रयास है।
1: युवाओं को क्या कहेंगे आप?
0: देखिए, युवा किसी भी देश में, शहर में, वो उस शहर का भविष्य है, और हम युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने यूथ की एनर्जी को सकारात्मक दिशा में लगाएं। आजकल हम ये देख रहे हैं कि यंगस्टर्स के बीच में अल्कोहल और ड्रग्स जो है वो कहीं ना कहीं पेनिट्रेट तो कर रहा है, तो स्पोर्ट्स एक माध्यम हो सकता है कि इन सब चीजों को हटा करके हम अपने जीवन को सकारात्मक रास्ते पे कैसे लेके आए, अपने

0: युवा एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे लेके आए, अपने पर्सनल शरीर को हम कैसे मजबूत रखें और स्वास्थ्य को कैसे ओवरऑल सही रखें, तो ये उसका एक प्रयास है। एंड युवाओं से यही बस गुजारिश है कि आप भारी से भारी संख्या में, आप जहां भी हैं अंडमान में, आप इस रंगत मैराथन मानसून मैराथन में पार्टिसिपेट कीजिए।
1: अंत में दीपांशु वोरा जी, उन श्रोताओं के लिए आपका क्या विशेष संदेश जो 4 जुलाई को रंगत मानसून मैराथन का हिस्सा बनने जा रहे हैं?
0: आप सबको यही संदेश है कि ये हमारा स्वास्थ्य का उत्सव है ये मानसून मैराथन। आप इस कार्यक्रम में पूरे जोश और उत्साह से पार्टिसिपेट कीजिए। आपको जो मदद की जरूरत पड़ेगी, हमारी पूरी टीम तैनात है। हमने पंचायत का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, हमें एजुकेशन और हमने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के टीचर्स का पूरा सहयोग मिला है, हमारे एसी ऑफिस का पूरा स्टाफ को हमने ड्यूटी पे लगा दिया है। तो आप निश्चिंत रहिए, ये आयोजन हम सुचारू रूप से चलाते हैं, ये मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ।
1: तो हम समझते हैं कि रंगत मानसून मैराथन जो 4 जुलाई को आयोजित होने जा रहा है, इसमें अधिक से अधिक प्रतिभागी इस मैराथन में हिस्सा लेंगे और जिस सोच को लेकर इसका आयोजन किया जा रहा है उस उद्देश्य में सफलता मिलेगी। तो इस आयोजन के लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: थैंक यू सो मच।

0: दोस्तों अभी आप मिडिल अंडमान के सहायक आयुक्त श्री दीपांशु वोरा से रंगत में होने जा रहे मॉनसून मैराथन के अंतर्गत ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे, जिसकी भेंटकर्ता थी जयशीला। चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ ही हमारा आज का यह पत्रिका कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार,
0: वादा करते हैं जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त दीपक कुमार सिंह को अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं बॉबी फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने। बोल आनंद बख्शी के, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: बाहर से

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत था अभिमान फिल्म से। प्राण जाए पर वचन न जाए। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

मुकेश के गाए कभी कभी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। रोजगार समाचार। अंडमान लोक निर्माण विभाग APWD में कार्यपालक अभियंता सिविल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 7 पदों को प्रतिनियुक्ति ISTC के आधार पर प्रारंभिक 2 वर्ष की अवधि के लिए भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वेतन लेवल 11 ग्रुप ए राजपत्रित गैर मंत्रालय नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होगी। अभ्यर्थियों को इनमें से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी। मूल विभाग कैडर में समान पद पर नियमित रूप से कार्यरत अधिकारी या पे मैट्रिक्स के लेवल 9 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 5 वर्ष की सेवा या पे मैट्रिक्स के लेवल 7 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 7 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की पार्ट ए पार्ट बी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अभ्यर्थियों को सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि पर आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति की अवधि 2 वर्ष की होगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में बायोडेटा 2 प्रतियों में विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट पिछले 5 वर्षों की APAR या ACR प्रतियां भी लगानी होंगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन उप सचिव PWD अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय कक्ष संख्या 139 श्री विजयपुरम में 18 जुलाई तक जमा करा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय से संपर्क किया जा सकता है। रोजगार समाचार समाप्त हुए। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। गौरवगान कार्यक्रम के तहत आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

गौरवगान कार्यक्रम के तहत अभी आप कुछ देशभक्ति गीतों का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देशभर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन

0: किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
0: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
0: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान

0: आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरलम में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
2: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्ध

0: सैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और आरएफआईडी आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
1: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
4: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY, इसे हम कह सकते हैं कि ये योजना खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन का एक दशक पूरा कर चुकी है। PMKSY ने पिछले एक दशक में समूचे भारत में सिंचाई अवसंरचना को मजबूत करने और कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। ये योजना 64,460 करोड़ रुपए से ज्यादा की केंद्रीय सहायता के साथ खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन के प्रमुख उत्प्रेरक के तौर पर उभरी है और 2.7 करोड़ से भी अधिक किसानों को अब तक लाभ पहुंचा है और 2.46 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई क्षमता पैदा की गई है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने देश के किसानों का भविष्य उज्जवल किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी मौजूद हैं। हरवीर जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद हर्ष जी।
1: आपसे पहला सवाल यही हम जानना चाहेंगे कि दरअसल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और देश की कृषि व्यवस्था में ये योजना पिछले एक दशक में किस तरीके का परिवर्तन लेकर आई है।
2: हर्ष जी देखिये, कृषि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एक इनपुट है वो सिंचाई है। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप कोई भी फसल उगाने के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं और अपनी तैयारी के साथ खेती कर सकते हैं। तो कृषि जो है वो एक तरीके से खेती करने के लिए, अगर हम ये कहें जो सिंचाई है वो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है। और इसीलिए क्योंकि अभी भी जो हमारा टोटल जो जिसे हम कहते हैं कि जिस क्षेत्रफल में खेती होती है उसका लगभग आधे से थोड़ा कम जो है, एक दशक पहले जो करीब 45% के आसपास था उससे भी कम था,

0: वो वर्षा आधारित था। तो यानी कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो पोटेंशियल है, जो उसकी हमें एक उम्मीद है कि कितना उसके अंदर संभाव्यता है, उसको हम पूरा उपयोग नहीं कर सकते थे अगर हम सिंचाई की सुविधा ना बढ़ाएं। तो पहला फोकस जो रहा, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य रहा है, वो देश के किसानों को उनकी खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है वो मुहैया कराने का उद्देश्य इसके पीछे रहा है, क्योंकि उसके बाद ही सारी चीजें आगे शुरू होती हैं। और उसमें एक मल्टीप्रोंग्ड अप्रोच जिसे कह सकते हैं हम लोग, एक साथ इसके बहुत सारे घटक हैं इस योजना के, उनको
1: जी
0: सब पर काम किया गया है। और उसके नतीजे जो आपने जैसे कहा कि एक दशक में 2016-17 के बजट से लेकर के और अभी तक हमने 64,407 करोड़ रुपए का आवंटन सिंचाई के लिए इस योजना के तहत किया है। और उसका नतीजा यही रहा कि करीब जो 24.61 मिलियन हेक्टेयर जो है वो जमीन हम अतिरिक्त सिंचाई के तहत ला पाए, जिसका फायदा 2.5 करोड़ से ज्यादा देश के किसानों को हुआ।
1: सरकार ने एक लक्ष्य बनाया कि प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ये चीज सामने आई, जिसका फायदा भी किसानों ने और हमारे फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर ने उठाया। ये प्रति बूंद अधिक फसल, इसे कैसे आम श्रोताओं के लिए आप समझाएंगे?
0: एक तरीके से जो हम कहें कि जो स्लोगन भी बनाया गया, पर डोप मोर क्रॉप, यानी कि हर बूंद से अधिक उपज, का मतलब है कि जो हमारे पास जल उपलब्ध है, जो संसाधन हमारे पास सिंचाई के उपलब्ध है, उनको हम कितना दक्षता के साथ उपयोग कर सकते हैं, ताकि हम उसको जब कन्वर्ट करते हैं उत्पादन में फसल के, वो हम आकलन कर सकते हैं बेहतर उत्पादन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, और जो एक्सटेंशन वर्क है जिसमें किसान को बताना है, समझाना है कि जो पानी है एक तरीके से बहुत ही बहुमूल्य रिसोर्स है, उसका आप बेहतर दक्षता के साथ उपयोग करके अधिक उपज कैसे हासिल कर सकते हैं, तो उसके लिए जो जो भी कंपोनेंट है उनको केंद्रित रखते हुए आगे बढ़ा गया। तो इसीलिए जो स्लोगन है पर डॉप मोर क्रॉप, प्रति बूंद अधिक उपज, हम लोग उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है वो कदम इस योजना के तहत उठाए गए।
1: हरवीर जी, आपने मानसून आधारित यानी वर्षा आधारित सिंचाई की भी बात की, तो एक हम इसे कैसे समझें आम श्रोताओं के हिसाब से? एक तो जब वर्षा होती है तो हर खेत को पानी पहुंचता है, लेकिन फिर उसके लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आंकड़े क्या बताते हैं, अभी देश में कितने एरिया ऐसे हैं जहां वर्षा आधारित कृषि है, और कितने एरिया हम मान के चले ऐसे हैं जहां के लिए हम सिंचाई की सुविधा देते हैं जो वर्षा पर आधारित नहीं है? वर्षा हो ना हो, वहां सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा।
0: तो हमारा सिंचाई का जो ढांचा है जो बहुत बरसों से है, जैसे कि हम लोग कैनाल सिस्टम है, ट्यूबवेल सिस्टम है, और डैम बनाए गए हैं, चेक डैम्स हैं, तो ये एक जो पोन्ड्स हैं, जो तालाब हैं बड़े, उनका रेस्टोरेशन है, बहुत सारी चीजें उसके साथ में है। लेकिन जो कैनाल इरिगेशन, और हम जो कहते हैं कि भाई जहाँ ट्यूबवेल सिस्टम है, वो सारा जो हम कहते हैं इसको एश्योर्ड इरिगेशन, यानी कि बारिश हो ना हो लेकिन किसान के पास एक वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग करके वो अपने खेतों की सिंचाई करके फसल का उत्पादन कर सकता है। और इसलिए जो बहुफसलीय जो उत्पादन क्षेत्र है वहां पर किसानों की स्थिति भी अच्छी होती है, उत्पादन भी ज्यादा होता है, कि वो जो फसल चक्र उसका है वो रबी है, खरीफ है, जायद है, वो सारी चीजें उसमें हासिल कर सकता है क्योंकि उसके पास सिंचाई की सुविधा है। ये इस तरीके का जो हमारा क्षेत्रफल है वो 50% से थोड़ा ज्यादा है। बाकी जो है हमारा जो कृषि है वो हम कहते हैं कि वर्षा आधारित है, हालांकि वह काफी बड़े पैमाने पर वहां पर भी किसानों ने अपने स्तर पर और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका उपयोग करके सिंचाई की सुविधाएं देती हैं। इसको हम रेनफेड एरिया बोलते हैं। रेनफेड एरिया में अक्सर जो है एक फसलीय खेती होती है, और वो जब ये हमारा मानसून का सीजन होता है उस वक्त ये खेती होती है, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं कि हर वक्त बारिश हो। तो सरकार की जो योजना है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसका एक कंपोनेंट है वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में होता क्या है कि उस तरीके के सिंचाई के लिए पानी को इकट्ठा करने के एक ढांचे बनाए जाते हैं, चेक डैम्स बनाए जाते हैं, कि जो रेनफेड एरिया है वहां पर एक सिंचाई उस क्षेत्र में हो जाए जब कमी पड़ती है उस फसल, या जो पानी अगर बच जाएगा तो उससे आप दूसरी फसल के लिए भी पानी उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये एक काफी बड़ा काम है और देश भर में इसके ऊपर सरकार ने काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर। और इससे क्या हुआ कि जो इलाके ऐसे हैं जो कृषि में थोड़ा पिछड़े हुए हैं उनको बाकी क्षेत्रों के करीब लाने की कोशिश कामयाब होती है, क्योंकि वहां के किसानों को उनका जो

0: से जो आय है उसमें इसके जरिए सुधार किया जाना संभव है और हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है। ये वहां पर जो पॉन्ड्स है उनका रेस्टोरेशन होता है कि जिससे जब पानी की जरूरत है तो वहां से पानी किसान ले सके, और बहुत जगह यूजर एसोसिएशन बनी हुई है किसानों के, अपने एक तरीके से कलेक्टिव बने हुए हैं जो मिलजुल कर उसका मैनेजमेंट भी करते हैं और आपस में उस पानी का बंटवारा भी करते हैं, जिससे सबके साथ इक्विटेबल जो है रिसोर्सिस का इस्तेमाल हो सके। तो ये इस योजना का एक बड़ा कंपोनेंट मैं मानता हूँ और इसको काफी बड़ा बल मिला है। जो एक रेनफील्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी है और वो बड़े पैमाने पर इसके ऊपर काम भी करती रही है, तो ये तभी संभव हुआ है जब उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: हरवीर जी, आप ये भी बताएं कि जो ये अवसंरचना विकास है सिंचाई के लिए, ढांचागत विकास है, उसमें क्या नवीनता आई है समय के साथ साथ? जैसे अब तो हम हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो सिंचाई में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई है और ढांचागत जो विकास हुआ है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं?
0: इसका एक कंपोनेंट है एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, AIBP जिसको बोलता है।
1: जी,
0: वो प्रोग्राम ऐसा है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं लंबे समय से उनका जो लास्ट माइल कंप्लीशन है, यानी कि जो प्रोजेक्ट 80% पूरा हो गया या 90% पूरा हो गया, उसमें अगर 10% काम बचा तो उसको तेजी से पूरा किया जाए, उसके लिए अलोकेशन किया जाए, और उसके पूरा होते ही उसका जो पोटेंशियल है, जो उसके जरिए जो एक संभावना है या कितना क्षमता का हमने उम्मीद रखी है उसके सिंचाई की जो उसमें पैदा होगी, उसका उपयोग तुरंत हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कंपोनेंट रहा है और इसके ऊपर जो है करीब 21,000 करोड़ रुपया जो है इसके लिए अलोकेट हुआ, और बड़े पैमाने पर इससे करीब 173 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उसको सिंचित सुविधा की तरह हम दे पाए। प्लस जो माइनर इरिगेशन है, जैसे मैंने आपको चेकडैम की बात की थी, या माइनर इरिगेशन है वो सब हुआ। साथ में जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आपने कहा कि जो मैं कहता हूँ कि प्रिसीजन इरिगेशन जो है, कि आपको माइक्रो इरिगेशन की जो स्कीम्स है कि भाई आप स्प्रिंकलर है, आपके ड्रिप इरिगेशन है, जिससे आप सिंचाई के साथ आप न्यूट्रिशन भी पौधे तक सीधे पहुंचा सकते हैं, जिससे आपकी उत्पादकता बढ़ती है और आपकी लागत घटती है। और ये जो स्कीम्स है जिसमें हम, मैं कह रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी का जहां इस्तेमाल हुआ है, इस तरीके की इरिगेशन की जो नई चीजें, नई पद्धतियां लागू की गई हैं, उससे बहुत कम पानी में, कई जगह 1/4 पानी इस्तेमाल होता है फ्लड इरिगेशन के मुकाबले इसमें, या उससे भी कम होता है, लेकिन जो उपज है वो बेहतर होती है, उत्पादकता बेहतर होती है। जो ड्राई लैंड एरियाज है, जैसे कि राजस्थान है, गुजरात का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा है, वहां पर इस तरीके की जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो सिंचाई सुविधाओं के ऊपर काम हुआ है, क्योंकि इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है और उस सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है।
1: जी,
0: जैसे आपने कहा कि पहले से जो हमारा कैनाल इरिगेशन था, जो बड़े पॉन्ड्स थे या लेक्स थे जो है, वहां से जो पानी का हम इस्तेमाल कर पा रहे थे नहरों के जरिए, तो लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें अगर ट्यूबवेल सिस्टम भी है तो वहां पर भी आप जो है बोरवेल में, वहां पर भी ये आप उसको आगे नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जहां पानी का स्तर ऊपर था वहां पर बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल्स जो है उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए, उसका इस्तेमाल हुआ। और जो जो सिंचित, जैसे हम ईस्टर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं, वहां जो सिंचित एरिया बढ़ाने की बात है उसमें ये काफी मददगार हुई है स्कीम्स इस तरह की। इवन राजस्थान में बड़े पैमाने पर लोगों ने प्रिसीजन जो इरिगेशन की हम बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, प्लस सोलर पंप्स के जरिए, छोटे पंप्स और सोलर के जो एनर्जी जहां बिजली की भी जरूरत नहीं है, ये सारा चीजें तभी हो पाई है जब आपने एक बहुत वृद्ध स्कीम बनाई और उसमें हर कंपोनेंट को रखा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डैम बनाएंगे और इरिगेशन के लिए चैनल्स बनाएंगे, नहीं, जो भी उपलब्ध एक तरीके से विकल्प है उन सबको एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की।
1: हरवीर जी, आपने बहुत सही बताया कि किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल कर और स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर किसानों ने अपनी फसल को बढ़ाया है, अपनी आय बढ़ाई है। यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के किसानों ने स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाकर पानी, बिजली और श्रम की लागत काफी कम कर दी, अपना उत्पादन बढ़ाया। और आपने राजस्थान की भी बात की कि जहां किसानों ने कम पानी के बावजूद अपना उत्पादन बढ़ाया है। साथ ही आपने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP के माध्यम से भी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को किस तरीके से सरकार ने पूरा किया है इस पर भी बातचीत की। अब आप हमें ये बताएं कि सरकार खास तौर पर, विशेष रूप से अगर कहें, छोटे और सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए 55% तक की सहायता देती है। आपने अभी थोड़ी देर पहले सब्सिडी की भी बात की, इससे किसानों की आय और खेती पर पिछले कुछ वर्षों में क्या प्रभाव पड़ा है?
0: ये जो छोटे किसान होते हैं उनके पास संसाधनों की कमी होती है, उनके पास जो वित्तीय संसाधन है वो बड़े किसानों की तरह उपलब्ध नहीं होते कि वो इन्वेस्टमेंट करके

0: सुविधाओं पर तुरंत अपने लिए सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है। यहाँ पर जो सरकार ने सब्सिडी मुहैया कराई है, जो कंपोनेंट जो लागत आती है उसका बड़ा हिस्सा जो दिया है, और इसमें कोशिश ये हो रही है कि ये जो सुविधाएं विकसित हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो, जिससे कि जो वाटर यूज एफिशिएंसी, जो यानी कि पानी के उपयोग की जो दक्षता है, जो हम लोग पीछे कह रहे थे कि पर लोग मोर क्रॉप जो है उसके ऊपर फोकस किया जाए, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे अक्वाफर्म या और पॉन्ड्स उनको कैसे रिचार्ज रखा जा सकता है।
1: जी
0: मेरा अभी भी मानना है कि अभी इस तरीके के जो किसान है हमारे देश में, अभी भी जो लघु और सीमांत किसान है उनकी हिस्सेदारी करीब करीब 88-89% के बीच में चले गए। जोत का जो आकार है 2 हेक्टेयर से कम जमीन के जो लैंड होल्डिंग्स है उनको अभी एक तरीके से जो एक्सटेंशन है, जो उन तंत्र सूचना का है कि उनको कैसे हम शिक्षित करें, कैसे उनको हम इसके लिए तैयार करें कि वो इस तरह की जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट लेकर के, और जो कृषि जो वो खेती करते हैं उसमें अपने उपज बेहतर कर सके, अपने जो आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सके, अपनी ज्यादा फसल करके ज्यादा आय हासिल कर सके, क्योंकि स्कीम्स अवेलेबल है उस पर बड़े पैमाने पर। अभी भी जरूरत यह है कि जो लिंकेज हैं उनको कैसे हम जोड़ें, किस राज्य की क्या स्कीम है,
1: जी
0: कहाँ से उनको ये उपकरण लेने हैं, उसके खेत के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है, तो ये उनको अभी और ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत
1: जी और हरवीर जी, यहाँ यह भी बताते चलें कि केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 6,587 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और यह दर्शाता है कि सरकार जल सुरक्षा और कृषि उत्पादकता को किस तरीके से सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हरवीर सिंह जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Countrywide.

श्रोताओं, आपने अभी श्री मार्गी मधु द्वारा प्रस्तुत चाक्यर कूथ सुना। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी त्रिशूर के स्टूडियो में रिकॉर्ड

0: किया गया था।
1: Dear listeners, you have just heard the Chakyar Kuta presented by Shri Margi Mathu and Party. This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur.
0: क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में हम आपके लिए श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम संगीत लेकर आए हैं। श्री अमल एंटनी एक पार्श्व गायक, संगीतकार, कोरल अरेंजर तथा वोकल कोच है। वे आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार भी है। भारतीय और पाश्चात्य संगीत परंपराओं में समान रूप से दक्ष अमल एंटनी ने विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में सुगम संगीत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2006 में वे गंधर्व संगीतम टेलीविजन रियलिटी शो के विजेता बने तथा उन्हें राज्य स्तर पर पी सुशीला पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के रूप में सम्मानित किया गया।
1: Continuing with the national program of regional folk and light music, we now bring you Malayalam light vocal songs presented by Shri Amal Antony. Shri Amal Antony is a playback singer, music composer, choral arranger and vocal coach. He is an A-grade artist of Akashwani. A gifted musician with accomplishments in both Indian and Western music traditions, Amal Antony was a national winner in light vocal music at the University Youth Festival in 2012. He also won the Gandharva Sangeetam television reality show in 2006 and received the P. Sushila Award for Best Male Singer at the state level.
0: Aaj raat, Shri Amal Antony char sugam geet प्रस्तुत कर रहे हैं। इन चारों गीतों के बोल मलयालम के प्रसिद्ध फिल्म गीतकार एवं कवि श्री रफीक अहमद ने लिखे हैं। इन गीतों का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार तथा भक्ति संगीत के क्षेत्र में विशेष रूप से ख्याति प्राप्त श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिया है।
1: Tonight, Shri Amal Antony presents four light vocal songs. The lyrics of all songs have been written by Shri Rafiq Ahmed, the renowned Malayalam film lyricist and poet. The music has been composed by Shri T. S. Radhakrishnan, a noted music director who is especially acclaimed in the field of devotional music.
0: Shri Krishna aur Radha ka sambandh matra laukik prem nahi hai, balki wo jeevatma aur paramatma ke divya milan ka prateek hai. आइए सबसे पहले राधा माधव के प्रेम का सुंदर चित्रण करने वाला एक गीत सुनते हैं।
1: The relationship between Shri Krishna and Radha is not merely a worldly romance. It symbolizes the divine union between the individual soul and the supreme being. Let us begin by listening to a song that beautifully portrays the love of Radha and Madhav.

0: प्रेम मनुष्य को सपनों, आशाओं और आनंद की दुनिया में ले जाता है। वही प्रेम वियोग उसे आत्मचिंतन और विरह वेदना की ओर ले जाता है। आइए अगले गीत में विरह की वेदना से व्याकुल एक प्रेमी हृदय की भावनाओं को सुने।
1: While love leads a person into a world of dreams, hopes and joy, the loss of love takes one into the realm of introspection and the pain of separation. In the next song, let us listen to the yearning heart of a lover grieving in the anguish of separation.

0: प्रथम प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मन में अमित स्मृतियां रिच देता है। उसमें जिज्ञासा, सपने, आशाएं और निष्कलुष भावनाएं भरी होती है। इत्र की मधुर सुगंध की तरह प्रथम प्रेम की यह सुगंध अब इस गीत के माध्यम से वातावरण में फैल रही है। आइए सुनिए।
1: First love is an experience that creates unforgettable

0: वृश्चिक मास की शीतल प्रभात में जब प्रकृति नवजीवन का श्रृंगार धारण करती है, तब फूलों से फूलों तक उड़ती तितलियां रंग बिरंगे सपनों का ताना बाना बुनती है। वे हमें भी सपने देखने और जीवन की सुंदर कल्पनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।
1: In the cool freshness of a Vrishika dawn, as nature adorns itself with new life, butterflies fluttering from flower to flower weave dreams of many colors. They inspire us, too, to dream and to embrace the beauty of imagination.

आज क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम गीत सुन रहे थे। इन गीतों के बोल श्री रफीक अहमद ने लिखे थे तथा संगीत श्री

0: टी एस राधाकृष्णन ने दिए थे। उनके साथ संगत कर रहे थे श्री विल्सन केएक्स कीबोर्ड, श्री बाबू वर्गीस रिथम पैड, श्री सी एन के मूर्ति बांसुरी तथा श्री सी श्री कुमार तबला। उसके साथ ही आज का क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का समापन होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी त्रिशूर केंद्र में रिकॉर्ड किया गया था। यह प्रसारण आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया।
1: In the national program of regional folk and light music, you were listening to a presentation of Malayalam light songs by Sri Amal Antony. The songs have been written by Sri Rafiq Ahmed and composed by Sri T. S. Radhakrishnan. He was accompanied by Sri Wilson K. X. on keyboard, Sri Babu Varghese on rhythm pad, Sri C. N. K. Murthy on flute, and Sri C. Sri Kumar on tabla. With this, we come to the end of today's national program of regional folk and light music. This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: Medium wave 438.6 meter, अर्थात 684 kilohertz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधित चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण समुद्र में वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलेगी, जो कि बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग तक हो सकती है। अतः मछुआरों को रविवार 5 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल शाम तक के मौसम संबंधित पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के एक या दो भागों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी एवं द्वीपों के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। इस समय रात्रि के 11:01 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

Hello, this is PC Studio. Now time is 4:52:43 seconds.

45, 46, 47, 48.

ओपन किया, दिस इज टॉक स्टूडियो, नाउ हियर द टाइम इज 5:06 विद सेकेंड्स, 35, 36, 37. दिस इज माइक टू ऑफ टॉक स्टूडियो. नाउ कंप्यूटर वन लेफ्ट कार्ट.

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 12वीं तिथि अर्थात 3 जुलाई सन 2026।

इस समय प्रातः के 5:28 और 30 सेकंड हुए हैं। आज की अपनी पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है।

0: अनमोल विचार।
1: कहा जाता है अतिथि देवो भव। अतिथि का सम्मान करना भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। अतिथि सेवा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि प्रेम, सम्मान और संस्कारों की पहचान है। जो अतिथि का स्वागत मुस्कान और सद्भाव से करता है, वहां सुख और समृद्धि स्वयं रास्ता खोज लेती है। अतिथि का आदर करना मानवता का सबसे सुंदर रूप है, क्योंकि अतिथि में हम ईश्वर के अंश का दर्शन करते हैं।
0: ये था आज का अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए मातृ वंदना।